0: तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
1: ॾाढो सुठो
0: जीए FM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
4: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
4: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी
3: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
4: न अदा आसाबनि जो सूर जोड़न जो सूर कंध ऐं चेल जी तकलीफ़ सट धक लॻण पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे
3: इस्तेमाल कीअं कजे
4: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो जी हा फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर खां आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर तां नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: लाहौर, झेलम ऐं सरगोधा सूधो पंजाब जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में तेज़ बरसाति, कसूर ऐं लाहौर सूधो ॿियनि घरनि जूं छितियूं। खां पोइ आम ज़िंदगी मफ़लूज बणिजी वई। शाहदरा टाउन, शादमान ऐं डेविस रोड बरसाती पाणी जे तलाह में तब्दील। लाहौर इंतिज़ामिया पारां अक्सर रोड क्लियर करण जी दावा। गुजरात ऐं हाफिज़ाबाद में बरसाति हेठां वारनि इलाइक़नि में
1: तबाही मचाए छॾे। लाहौर, सरगोधा, हाफिज़ाबाद, वाड़ी ऐं ॿियनि शहरनि में तूफ़ानी बरसाति सबबि गोॾे जॾो पाणी भिजी वियो। गुजरात जे इलाइक़े कड़ियाल नालो में बरसाति दौरान घर जे भित किरण सबबि टे भेण भाउ फोत। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां केतिरा ई कलाक गुज़रण बावजूदि पाणी निकाल न थियो।
2: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते हमला रोकण जो हुकुम ॾेई छॾियो। ईरान ते लगातार ॿिनि हफ़्तनि ताईं जारी हमलनि बैदि गुज़िरियल राति सदर ट्रंप जे हमलनि जी मंज़ूरी ॾिनी। ख़ैबर एजेंसीअ मूजिबि इहो वाज़े न आहे त हमलबंदी थी वई आहे, पर ॿिनि हफ़्तनि खां जारी हमलनि जो तसलसल टुटी वियो आहे। सदर ट्रंप मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त वटि हमला जारी रहण ऐं उन्हनि खे वधीक सख़्तु करण जो इख़्तियार मौजूदु आहे। हमलनि सबबि ईरान में मुकमल तबाही थी आहे, पर अकलमंदीअ वारी हिकमत अमली इहा आहे त ईरान सां डील कई वञे। सदर ट्रंप टियों ऐं चोथों भेरो बि सदारती इलेक्शन विहण जी ख़्वाहिश बि ॾेखारे छॾी।

इस्तेहकाम तरफ वञण जो वाहिद रस्तो आहे। बेजिंग पाकिस्तान ऐं ॿियनि मुल्कनि जे सालसी वारनि कोशिशुनि जी हिमायत जारी रखंदो। अब्बास रैक्ची चयो त अमरीका जंगबदी मुआहिदे जी पंजकड़ी कंदे ईरान ते हमला कया। ईरान जे ॻाल्हियुनि वारी ख़्वाहिशुनि बरक़रार आहे। छिकताण में वाद न

0: भारत में मोदी सरकार पेपर लीक करण खिलाफ जेएनसी के तरीका डो गोडा खोड़े छड़ा भारत जो तालीम वारो वजीर मुस्तैफ नौजवान जो जंतर मंतर ते जशन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुस्तफी थियण बाद वजीर आजम दरेमदर प्रधान जी इस्तीफा मंजूर करे वरती तालीम वारे वजीर जी इस्तीफा जी बुधी दिल्ली में जंतर मंतर पार्क में वेठल जेएनसी जो जशन काकरोच जनता पार्टी तालीम वारे वजीर जी इस्तीफा ऐं हुकूमत सां ॻाल्हियुनि बाद एहतजाज ख़तम करण जो ऐलान करे छॾियो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खिते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: सकरण के हो तो आवाज़ भी सकरण की है।
0: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज
2: जो शहर जो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
3: DFM 90.8

0: کیونکه مکرینو.
1: जो शहर बहजो घर सकरंड आई सकरंड जो आवाज
2: GFM 90.8

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, varam fauri khatam. Aaj hi kareebi store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: खेतारी में बरसात सबब टीह का कच्चा घर ड्रही पट कंबर बाडरा डोकरी में वसकारो बरसात जो सिलसिलो सूमर ताई जारी रहने की अग कथी मौसमियात खाते मूजिब कराची हैदराबाद थरपारकर उमरकोट मीरपुर खास बदीन सांगर टंडो मोहम्मद खान मटियारी शहीद बेनजीराबाद में 27 जुलाई ताई हल्की तो किथे तेज बरसात पवंदी इम्कानी बरसात के नजर में रखंदे सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह सीएम हाउस में रेबिन इमरजेंसी डेस्क कायम कर छी लागापल इदार के मुतरक रहने की हिदायत
4: पंजाब में बरसात तबाही मचाए छी लाहौर सरगोदा हाफिजाबाद वाड़ी ए बिन शहर में तूफानी बरसात सबब गोडे जो पानी भिजी वो गुजरात के इलाके कड़ियाल नवाल में बरसात दौरान घर के भित किरण सबब टे भेण भाव फोत मुख्तलिफ इलाक केतरा ही कलाक गुजरण बावजूद पानी निकाल न थो

0: ते हमला रोकण जो हुकुम ॾेई छॾियो। ईरान ते लगातार ॿिनि हफ़्तनि ताईं जारी हमलनि बाद गुज़िरियल राति सदर ट्रंप जे हमलनि जी मंज़ूरी ॾिनी। खेबर एजेंसीअ मूजिबि इहो वाज़े न आहे त हमला हिकु ॾींहुं रोकिया विया आहिनि या जंग बंदी थी वई आहे, पर ॿिनि हफ़्तनि खां जारी हमलनि जो तसलसल टुटी वियो आहे। सदर ट्रंप मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त वटसि हमला जारी रहण ऐं उन्हनि खे वधीक सख़्तु करण जो इख़्तियार मौजूदु आहे। हमलनि सबबि ईरान में मुकमल तबाही थी आहे, पर अकुलमंदीअ वारी हिकमत अमली इहा आहे त ईरान सां डील कई वञे। सदर ट्रंप टियों ऐं चोथों भेरो बि सदारती इलेक्शन वेहण जी ख़्वाहिश बि ॾेखारे छॾी।
1: ईरान पारां अमरीकी फ़ौज जे जारियत ख़िलाफ़ अमरीकी अॾनि ते जवाबी कार्रवाई में 11 रीफ्यूलिंग विड़ाक जहाज़ ऐं ड्रोन तबाह करण जी दवा। आसरा इनकलाब पंहिंजे बयान में चयो आहे त अमरीकी अॾनि ते हमले में हैंगर में बीठल हिकु F-15 जहाज़, हिकु P-8 जहाज़, C-17 ट्रांसपोर्ट जहाज़, 8 ॿियनि रीफ्यूलिंग जहाज़नि समेत 17 ड्रोन तबाह करे छॾिया आहिनि।
0: ईरानी फ़ौज जे खातबुलंबिया मर्कज़ी हेडक्वार्टर जे सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफ़िर चयो आहे त उहे अमरीकी फ़ौज सां इम्कानी ज़मीनी जंग में मुक़ाबले जा मुंतज़िर आहिनि। दुआ आहे त अमरीकी फ़ौज जंग जे मैदान में संदन साम्हूं अचे त जीअं सिधी रीति मुक़ाबिलो करे सघिजे। ब्रिगेडियर वधीक चयो आहे त दुश्मन सां हिकु लाॻीतो जंग आहे जेका ख़तमु थियण वारी न आहे। अमरीका ज़मीनी हमिलो कयो त ईरानी फ़ौज हुन जो मुक़ाबिलो करण लाइ हर वक़्तु तयारु आहे।

0: चीन पारां खिते में जारी सूरत हाल ते गणती जो इज़हार। अमरीका ईरान खां मसले जे हल लाइ जल्द ॻाल्हियूं शुरू करण जो मुतालबो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास रैकची जे चीनी हम मनसब वांग जे सां किर्गिस्तान में मुलाक़ात। चीनी परॾेही वज़ीर पारां ईरान जे ख़ुदमुख़्तियारी जी हिमायत मक़ामती यादाश्त ख़ते में अमन ऐं इस्तेहकाम तरफ़ वञण जो वाहिद रस्तो आहे। बेजिंग पाकिस्तान ऐं ॿियनि मुल्कनि जे सालसी वारनि कोशिशुनि जी हिमायत जारी रखंदो। अब्बास रैकची चयो त अमरीका जंग बदी मुआदे जी पंजकड़ी कंदे ईरान ते हमला कया। ईरान जे ॻाल्हियुनि वारी ख़्वाहिशुनि बरक़रार आहे, छिकताण में वाद नथा चाहियूं।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुंहिंजी जान ई करे छॾी आहे। हलण वेहण हर कम ॾुखियो लॻे थो।
3: त पोइ छा अञा ताईं फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमालु न कई अथई?
2: न यार, छा वाकई फ़ाइदो करे थी?
3: बिल्कुलु अदा, कुदरती जुज़नि सां तयार कयल फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंध ते जल्दी जज़्ब थी सूर, सोडियम जिस्म जे नसुनि जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर, कंध ऐं कुलनि जी तकलीफ़ या वर्जिश का पोए छिक, हर हालत में बेहतरीन साथी। फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम
2: इस्तेमाल किए कजे।
3: रुगो मुतासिर हंध ते डीह में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए आराम जो एहसास वच। बुध जेकर उमरे या हज ते वञण जो इरादो अथई त फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सां गॾु खणी वञा।
2: वाह, पोए अॼु ई वठी ईंदसि।
3: फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो।
4: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो जी सुबह का सलाम मेरा आप सबको मेरी तरफ से पहुंच जाए. और जैसा कि आपको पता है कि आज का इतवार का दिन है, पूरा सात दिन इंतजार करने के बाद हम लोग दोबारा से संडे भी आप लोगों के साथ मौजूद हैं. जैसा कि आपको पता है कि आपका और मेरा साथ रहने वाला पूरे पूरे दो घंटे के लिए, और इस दो घंटे में करनी है बहुत सारी बातें. और जैसा कि आप सुन रहे हैं, आओ बात करें विताजी सना के साथ. तो जी मुझे ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको परेशान नहीं होना है, और परेशान होने के साथ बिल्कुल आपने टाइप करना है 888 पे एसकेआर लिख के विथ योर नेम और विथ योर सिटी नेम. आप मुझे एसएमएस करके ज्वाइन कर सकते हैं अपने साथ, और अपनी बातें मुझ तक शेयर कर सकते हैं. और उसके अलावा जो आप मुझे फेसबुक पर लाइव कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट करने के लिए आपने GFM88 पेज आपने ओपन कर लेना है. और इसी आप मेरे नाम का आपको फ्लायर दिख जाता है विताजी सना के नाम से, तो आपने वहाँ पर जाके बिना देर किए मेरी आवाज़ सुनने के बाद फौरन से लाइक करना, शेयर करना है, और कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन कौन मेरे साथ मौजूद है. और जो मेरे सवाल सुनने वाले हैं वो मुझे SMS करके मुझे ये बता दें कि आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ताकि मैं अपना सवाल आप लोगों को बता सकूँ. क्योंकि अगर आप लोग मुझे SMS नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलता कि मेरे साथ अभी तक कौन लोग मौजूद हैं, और मैं सवाल करती हूँ देन आप लोग मुझे इतना लेट रिप्लाई कर रहे होते हैं कि मैं सॉन्ग प्ले नहीं कर पाती आपकी फरमाइश की. तो फिर आप लोग कहते हो कि आपने हमारा सॉन्ग प्ले नहीं किया. तो दैट्स व्हाई आप मुझे जाकर अभी ही ज्वाइन करें, और दो घंटे के लिए पूरे पूरे साथ रहें मेरे.

तो जी देखते हैं यहाँ पर अभी हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ जो मौजूद है, हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हो गए हैं और हमें SMS करके बताते हैं कि वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सुबह का नाश्ता शायद उन्होंने कर लिया है या नहीं किया, तो बिना नाश्ते के आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है नज़ीर खुसरो, कहते हैं फ्रॉम सोबतपुर बलोचिस्तान से, रिलेटेड टू सोबतपुर बलोचिस्तान से हमें ज्वाइन करते हैं वो।

सवाल मेरा ते मेरा सवाल आप लोग ये सुनने से यार ये तो आवाज प्रॉब्लम हो रही है शायद आप लोग तो पहुंच जाएगी मेरी आवाज. अच्छा मैं आपको बताऊं कि मेरा जो सवाल है सवाल ये कि आप लोगों ने आज ये बताना है कि अंग्रेजी का वो कौन सा अल्फाबेट है जिसमें सबसे ज्यादा पानी है. तो देखते हैं आज ABCD में से मतलब अंग्रेजी में से ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसमें सबसे ज्यादा पानी है. जाइए पता लगाइए और मुझे बताइए क्योंकि यहाँ पर कर रही हूँ मैं आप लोगों के सवाल के जवाब पर वेट. और जो इसके अलावा हम लोग यहाँ पर सुनेंगे आज एक और खूबसूरत फायज़ अली की आवाज़ में एक और सॉन्ग. और जो कि हम सुनेंगे हमेशा आपको पता है कि मैं सुनती हूँ कोई भी सॉन्ग न्यू सॉन्ग होता है तो हमेशा आप लोगों के साथ ही सुन रही होती हूँ. मैं कभी भी कोई ऐसा सॉन्ग या कोई भी ऐसी वो नहीं होती कि मैं आप लोगों के बिना ही उसको एंजॉय करूँ. तो इस चीज़ से तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र.

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू ना मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

वंस अगेन, और यकीनन आप लोगों के मेरे साथ मौजूद और सवाल का जवाब भी आप लोगों ने सोच लिया होगा यकीनन, क्योंकि सवाल मेरा इतना कोई मुश्किल नहीं था. तो मैं आपको बताऊं, कि भाई जो आज इतने सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तो देखते हैं कि भाई अभी हमें कौन ज्वाइन करता है. अभी हमें ज्वाइन करते हैं अब्दुल रज़ाक, कहते हैं वी आर देयर इज नो प्रायोरिटी, देयर इज नो गेन, वी विल डेडिकेट इट टू डियर कजन बेवफा जमाल कंबर जी. वो आपके कजन जो है वो बेवफा भी हो गए. अच्छा जी जी, जरूर जरूर. और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले ज्वाइन करते हैं हमेशा की तरह, आज भी हमें सबसे पहले जो ज्वाइन किया है वो ज्वाइन किया है हमें कराची से मसरूर अहमद ने. और मसरूर अहमद कराची से हमें ज्वाइन करते हुए कहते हैं कि सक्कर के लिए कराची से मसरूर अहमद आरजे सना जी. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आरजे सना जी. फैज़ अली का सॉन्ग सुनाएं जो कि मैं अभी सुना चुकी हूँ. ओके, और उसके अलावा कहते हैं जो आप सवाल दोगी अगर ठीक हुआ तो शीशे का दिल फैज़ अली. अरे वाह यार, ये तो मैंने आपका मैसेज ही नहीं पढ़ा था और मैंने सॉन्ग शीशे का दिल ही चलाया और अभी तक आपका जवाब नहीं आया, ये कैसे हो सकता है. बताइए, मैंने फैज़ अली की आवाज़ में जो सॉन्ग सर्च किया था वो मैंने खुद ही ये किया था शीशे का दिल ना, तो आपका मैसेज भी यही आया शीशे का दिल. और देखेंगे ये तो आपका मैसेज सुबह का आया था और मैंने तो अपने पास एक सॉन्ग चलाया था, ये कैसे हो सकता है कि सेम सेम मैचिंग. और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मैं सॉन्ग प्ले कर चुकी हूं और सवाल मैं आपको बताने लगी हूं. सवाल मेरा तो बताया था मैंने आपको, सवाल का जवाब अभी तक आप लोगों ने मुझे नहीं दिया है, तो मैं यही चाहूंगी कि आप मुझे सवाल का जवाब दें. सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि अंग्रेजी का वो ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसमें सबसे ज्यादा पानी होता है, तो ये पता लगाएं और मुझे भी बताएं. यहाँ पर टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है, एक घंटा समथिंग हमारे पास टाइम रह गया है, तो अभी देखते हैं कि आप लोग मुझे कैसे बताते हैं, पता लगा.

0: देखते हैं अभी हमें कौन कौन जवाब दे रहा है यार. मैंने तो चेक किया अभी तक इसके जवाब मुझे ठीक नहीं है. और अगर जवाब आप लोग मुझे देंगे तो भाई काइंडली आप लोग टाइम ही मुझे जवाब दिया करें ताकि जो है ना मैं अपना आपको वो जवाब देकर जो है ना आपके पसंद का सॉन्ग भी प्ले कर सकूं. मजे मजे के सॉन्ग होते हैं यार, आप लोग इतनी देर से जवाब देंगे तो कैसे पता चलेगा. और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ मौजूद जो है वो है नूर हसन तोनियो. कहते हैं योर शो इज ग्रेट, थैंक यू सो मच. और साथ में कहते हैं नूर हसन तोनियो फ्रॉम बदीन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, लवली यू विद द बेस्ट विशेस एंड टेक केयर. अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे. आमीन सुब आमीन.
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक. मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनियर जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, जनाब संजय पैरवानी MNA, जनाब अमीनुल हक MNA और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की कयादत को तारीख 26 जुलाई इतवार के दिन निरपोखास आमद पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं. मनजानीब मुत्तहिदा.

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
4: GFM 88
3: नेटवर्क
5: सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

तो जी जैसे कि सुन रहे थे आप लोग और मेरे साथ एक सॉन्ग और जाने इस दिल का हाल क्या होगा। हाँ वाकई यार इतना अच्छा हसीन मौसम है और देख के जो यार हम लोग कहते हैं कि वाकई पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं यार हमारे साथ कौन ज्वाइन करता है हमें। हमारे साथ मौजूद हैं लाड़काना से कहते हैं लियाकत अली।

0: जवाब भी उन्होंने मुझे दिया है और उसके अलावा मुझे कहते हैं कि कैसी हैं आप जी. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप बताएं लियाकत अली खगरानी सर, आपने मुझे लाड़काना से ज्वाइन किया है तो जी बहुत खुशी हुई है. ऐसे आपने मुझे ज्वाइन करते रहना है हर संडे ओनली ओनली और सुबह ग्यारह से दोपहर एक बजे तक. जैसा कि आपको पता है कि आपका मेरा साथ रहता है पूरे दो घंटे के लिए, तो आपने यहाँ पर बहुत सारी बातें जमा कर लेके रखने लेनी होती हैं और इन दो घंटे के दौरान में इतनी सारी बातें करनी होती हैं कि सारा सारा हफ्ता हमारा इन बातों में दो घंटे में गुजर जाए. दो घंटे में नजर आया यार बकायदा कि दो घंटे में हमारे साथ बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन आप लोग तो इतना डरे बैठे होते हैं, शायद सो रहे होते हैं यार, लेकिन नींदें तो पूरी हो जानी चाहिए. गर्मियाँ हैं और गर्मियों में तो नींदें पूरी हो ही जाती हैं, ना भी हो तो बंदा इतना देर तक सो ही नहीं पाता क्योंकि लाइट्स तंग कर रही होती हैं, कभी कुछ मसले होते हैं. सौ मसले होते हैं जो कि हमारी नींद पूरी हो ना होने देते हैं और हम लोग फिर भी जल्दी उठ जाते हैं. नींद अगर आ भी रही होती है ना तो तब भी हम लोग जल्दी उठ जाते हैं. तो आप लोगों के साथ भी यही होता होगा या आप लोगों के पास कुछ ऐसी अलोखी लाइट है जो जाती ही नहीं है, तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं. और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर टाइम होता है वहाँ पास एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाने का. न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाएंगे क्योंकि न्यूज़ का भी पता होना ज़रूरी है कि भाई क्या चल रहा है बाहर. तो अभी हम जाएंगे न्यूज़ ब्रेक की जाने पर, वापस आएंगे, वापस आके सुनेंगे और मज़ेदार सॉन्ग्स और रहेगा जब तक मेरे साथ. और कहीं जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम जा रहे हैं न्यूज़ पे. न्यूज़ सुनते हैं कि यार मुल्क में क्या हो रहा है, तो चलते हैं भाई न्यूज़ की तरफ. तो रहेगा मेरे साथ.
1: अब आप सुनेंगे एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़.
2: एक्सप्रेस पीएम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: फकीरी अप,
4: जो एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है.
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप,
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.
1: अब आप सुनेंगे

0: सिंध के मुख्तलिफ शहर में बे डी भी हल्की ए तेज बरसात जो सिलसिलो जारी। डायली तालके के गोठ जीतराड़ ए खेतारी में बरसात सबब 30 का कच्चा घर ड्रही पट। कंबर बार्डर डोकरी में वसकारो। बरसात जो सिलसिलो सूमर ती जारी रहने की अगकथी मौसमियात खाते मूजिब कराची हैदराबाद थरपारकर उमरकोट मीरपुर खास बदीन सांगर टंडो मोहम्मद खान मटियारी ए शहीद बेनजीराबाद में 27 जुलाई ती हल्की तो किथे तेज बरसात पवंदी। इम्कानी बरसात के नजर में रखंदे सिंध के वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह सीएम हाउस में रेबिन एमरजेंसी डेस्क कायम करे छी। लागापल इदारन के मुतारक रहने की हिदायत।
1: पंजाब में बरसात तबाही मचाए छी। लाहौर सरगोदा हाफिजाबाद वाड़ी ए बिन शहर में तूफानी बरसात सबब गोडे जो पानी भिजी वो। गुजरात के इलाके कड़ियाल नवाल में बरसात दौरान घर के भित किरण सबब टे भेण भाव फोत। मुख्तलिफ इलाक में केतरा ही कला गुजरण बावजूद पानी निकाल न थो।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते हमला रोकने जो हुक्म दई छड्यो। ईरान ते लगातार बिन हफ्तन ताई जारी हमलन बाद गुजरल रात सदर ट्रंप जे हमलन जी मंजूरी दिनी। खेबर एजेंसी मूजिब यो वाज़ह न आहे त हमला एक डी रोकिया होया आहिन या जंग बंदी थी वई आहे, पर बिन हफ्तन का जारी हमलन जो तसलसल टुटी वयो आहे। सदर ट्रंप ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त वटस हमला जारी रहण ऐं उन्हनि खे वधीक सख़्त करण जो इख़्तियार मौजूद आहे। हमलन सबब ईरान में मुकमल तबाही थी आहे, पर अकलमंदीअ वारी हिकमत अमली आहे त ईरान सां डील कई वञे। सदर ट्रंप टियों ऐं चोथों भेरो बि सदारती इलेक्शन वेहण जी ख़्वाहिश बि ॾेखारे छॾी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मीरपुर खास की आवाज।
2: जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे तो
3: पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
3: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंद ते आसानी सा जज़ब थी सूर आई सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी
2: सिर्फ चेले सूर लाए
3: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेले जी तकलीफ सट धक लगन पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे
2: इस्तेमाल किए कजे
3: मुतासिर थियल हंद ते डीह में ब का टे भेरा नरमी सा लगायो आराम जो एहसास हासिल करियो जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर का आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
4: भली कार MQM पाकिस्तान जे कन्वीनियर डॉक्टर खाली

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमालु छो नथो करीं?
0: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट। सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो जी FM 90.8।

अली हमें हमारे सवाल का जवाब देते हुए ज्वाइन करते हैं. और जवाब आपने मुझे बिल्कुल ठीक दिया था दिया है मतलब. और अगर आपने कोई फरमाइश सॉन्ग है सुनना है तो वो मुझे बता दें. इकबाल अशारी आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, आपका जो जवाब है आपने मुझे दिया था. आप मुझे कोई भी एक फेवरेट सॉन्ग का नाम बताएं, अगर आपका जवाब ठीक है तो हम जरूर कुछ सॉन्ग प्ले करेंगे. इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं गुल यासीन नाज, कहते हैं कि दिल नशीन रेडियो लिसनर्स क्लब मुल्तान, ग्रीटिंग फ्रॉम गुलनास यासीन और मोहम्मद हफीज़ उर रहमान बकर फौजी असलम मोहम्मद इकबाल स्कर्दू. तो जी कैसे हैं आप सब और इतने सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं. गुल यासीन नाज आप मुझे सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है. ऐसे ही आप मुझे ज्वाइन करते रहा करें. ओनली हर संडे मैं रहती हूँ आपके साथ पूरे दो घंटे के लिए, आपका मेरा साथ रहता है. आओ बात करें मैं भी ताजे सना के साथ, दिल की बात खुशी की बात हर बात यहाँ फन का वीकेंड डोज डोंट मिस इट. तो यार आपने क्या करना है, मुझसे बातें करनी है, बहुत सारी वीकेंड की सारी बातें जमा करके रख लेनी है, उठना है सुबह सुबह, नाश्ता भी नहीं करना, नाश्ता करके भी अगर बात करेंगे तो ठीक है, अगर

और भी लोग बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन मेरा जो सवाल था जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है, जैसे गुल यासिन नाज हमारे साथ मौजूद है, और इस तरीके जिसने भी मेरा शो सुना है, जिसने मुझे ज्वाइन किया है, कमेंट करने के लिए परेशान है, तो मैं आपको पहले बताऊं कि जो मेरा सवाल है, सवाल मेरा ये है, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि अंग्रेजी का ऐसा वो कौन सा अल्फ़ाबेट है, अंग्रेजी का ऐसा वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है। इसका टाइम मैं आपको देती हूँ 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद मैं आपसे इसका जवाब कलेक्ट कर लूँगी। और जो मुझे ज्वाइन करने के लिए परेशान है, तो जी मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की मुझसे ज़रूरत नहीं है। आपने टाइप करना है 888 पे सिंपल SKR लिख के, अपना सिटी का नाम लिख के आप मुझे SMS कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं मेरे सवाल का जवाब। और अगर आपको कोई और बात करनी है तो वो भी आप मुझे SMS कर सकते हैं भाई, कि आपको मेरा शो कैसा लगता है, आपने मुझे कब ज्वाइन किया था, या मुझे कब से सुनते हैं, ये सब आप मुझे SMS के जरिए बता सकते हैं। और इसके अलावा जो मुझे लाइव कमेंट करना चाहता है फेसबुक पे, तो जी फेसबुक पे जाइए, फेसबुक को ऑन करिए, और GFM88 पेज आपने ओपन कर लिया, मेरे नाम को फिलहाल आपको दिख जाता है विताज सना के साथ, और बात करें मैं शामिल आप लोग मेरे साथ हो जाते हैं। तो देर किए बगैर मेरी आवाज़ सुनने के साथ साथ आपने क्या करना है, वहाँ पर जाकर लाइक करना है, कमेंट करना है, और मेरे पेज को शेयर करना है। देन मुझे पता चलता है कि किसने मेरा पेज को ओपन किया था और सुना था मुझे। 5 मिनट दे दिए मैंने अपने सवाल के जवाब देने के लिए आप लोगों को, तो जब तक यहाँ पर एक और सॉन्ग मेरे पास मौजूद है, जब तक हम वो सॉन्ग प्ले करते हैं और सॉन्ग को सुनते हैं, तो आइए करते हैं सॉन्ग को एंजॉय साथ में।

जैसा कि सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग सॉन्ग, और ये एक पाकिस्तानी सॉन्ग है। आपको पता है कि यार सिंधी कल्चर पे सॉन्ग्स बने हुए हैं, तो हमारा सिंध तो सिंध है ना भाई, तो कल्चर है हमारा, तो उससे भी सॉन्ग होना ज़रूरी था जो कि हमने सुना। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर टाइम हो गया है, 5 मिनट आपको मैंने दिए थे कि आप मेरे सवाल का जवाब मुझे दे देंगे, तो देखते हैं अभी कि किसने और सवाल का जवाब दिया हो। तो हमारे साथ मौजूद हैं सकर, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे सना जी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। और कहते हैं शो नाइस वॉइस, आपकी टॉपिक का जवाब और जवाब आई एम

माजिद सोलंगी फ्रॉम सक्कर, माजिद सोलंगी फ्रॉम सक्कर, माजिद आप सक्कर से हैं और आपने मुझे जो जवाब दिया है उसके बाद आपने मुझे कोई सॉन्ग का नाम नहीं बताया, और जो जवाब है जवाब ये कैसे, आपने एक वर्ड में जवाब दिया, मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे बताएं कि अंग्रेजी का ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसमें सबसे ज्यादा पानी होता है, तो आपने मुझे एक वर्ड का नाम बताया या आपने मुझे एक अल्फाबेट नहीं बताया, आपने मुझे जस्ट एक अल्फाबेट बताना है कि जिसमें सबसे ज्यादा पानी होता है वो अल्फाबेट बताना है। खैर कोई बात नहीं, आपने मुझे टाइम दिया, आपने मुझे ज्वाइन किया, आपने मुझे जवाब दिया मेरे सवाल का, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर आपका कोई आप नहीं समझे या कुछ था तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने मुझे ज्वाइन किया, ये चीज़ अच्छी है आपकी, ऐसे आपने मुझे ज्वाइन करते रहना है और हर संडे मैं रहती हूँ आपके साथ, आओ बात करें, मैं पूरे दो घंटे के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ, आओ बात करें मैं, तो आओ बात करें मैं यार, इतनी सारी बातें होती हैं जो कि हमने करनी होती हैं, तो इसी तरीके से ये 2 घंटे हमारे कैसे गुजर जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर टाइम हो गया है, अभी मैं आपको जवाब बताती हूँ जी, लेकिन अभी देखते हैं इससे पहले कि और किसका जवाब है जो राइट है।

लोग इनसे हमें जवाब दिया लेकिन सॉन्ग का नाम नहीं बताया. खैर कोई बात नहीं, जब भी मैं आज अपने पसंद के सॉन्ग चला रही हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि अगर आप लोग मेरे पसंद का सॉन्ग सुन रहे हैं तो ये सब आपको जाते हैं. और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी जो मेरे सवाल के जवाब था. मेरा सवाल सबसे पहले ये था, देखें सुने आप लोग ये मेरा सबसे सवाल मेरा आप लोगों से ये था कि आप लोगों ने ये बताना था कि अंग्रेजी का ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसमें पानी होता. तो इसका आंसर था सी. सी इज द गुड आंसर और राइट आंसर. सी मतलब सी, आपको पता है कि अगर ए सी ए लिखी है तब भी वो जाकर सी बन जाता है, लेकिन अगर आप अल्फाबेट में देखें तो जस्ट सी भी एक सी है, तो जो सबसे ज्यादा पानी होता है. ये सी इसका आंसर था जिसने मुझे दिया है. वो आज का विनर है मेरे सेगमेंट का, वो विन कर चुके हैं और सबके लिए. और जिसने मुझे जवाब दिया है, जिसने सवाल नहीं समझा था कोई बात नहीं, आपने जवाब दिया एटलीस्ट, तो जवाब वालों की लिस्ट में तो आपका नाम है ना भाई. तो जिसने मुझे जवाब दिया है कम से कम आप उसके लिस्ट में है, तो आप लोगों के लिए सबको लिए मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करूंगी लास्ट में.

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
3: त पोइ तूं फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
2: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
3: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

0: हमेशा अकेले नहीं सुनती, अपने पसंद का कोई भी सॉन्ग होता है हमेशा आप लोगों के साथ सुन रही होती हूं, और ये सारे सॉन्ग आज डेडिकेट भी सिर्फ आप लोगों को हैं, क्योंकि मुझे ज्वाइन करने के लिए, मुझे कमेंट करने के लिए और मेरे सवाल का जवाब देने के लिए, तो जरूरी नहीं कि अगर आप लोग राइट जवाब देते हैं तो ही हम लोग सॉन्ग प्ले करें। ये तो मेरी अपनी विश थी कि अगर आप लोगों ने मुझे जवाब भी दिया है तो यार मैं आज तो आपको पसंद का सॉन्ग सुनाऊंगी। अच्छा जी, हमारे पास एक फरमाइश आती है, कहते हैं कि आरजे सना फुल सॉन्ग सुनाओ, शाहिद बाबर सॉन्ग है ना ना में दिल, माजी सुलंगी कहते हैं हमें। ओके जी, जरूर जरूर सुनाने की कोशिश करते हैं हम आपको टाइम के साथ, टाइम हमारे पास होता है अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का। जी जैसे ही वापस आते हैं तो आपको संग सॉन्ग प्ले करते हैं, तो रहिएगा मेरे साथ।
1: FM 88 Network, सिंध की आवाज। 44 साल जो तजुर्बो, हजारे मरीजन जो एतमाद, आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद। 44 साल जी वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसाबी अमराज, जोड़न जो सूर, मैदे में जलन, गैस, बदहजमी, तेजाबियत, गुर्दन जी पथरी, बवासीर, बे औलादी, वारन जो किरण, गंजपण फॉलेज खारिश, बेन मुख्तलिफ सेहत की तकलीफुन लाए, माहिराना होम्योपैथिक सलाह मुआसर इलाज फराम करे रहा आहे ने। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर, नए पिंडवारी पुल जे सामू, PSO आई शेल पेट्रोल पंप जे विच में। टाइमिंग छंछर खां खमीस, सुबुह 10 वगे का शाम 5 वगे ताई। अपॉइंटमेंट आई वधिक मालूम।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

तो जी यहाँ पर सुन रहे थे हम लोग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग सुनेंगे तो कोई भी सॉन्ग अकेले नहीं सुनेंगे, तो सारे साथ। तो ये फरमाइशी सॉन्ग मैं सुन रही थी आप लोगों के साथ, शायद अली बाबर की आवाज़ में सॉन्ग था, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था, अच्छा सॉन्ग था, तो जो कि हमने सुना साथ में। तो जी इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर आवाज़ टाइम बहुत ही कम रह गया है, रिमेनिंग सिर्फ 8 से 9 मिनट रह गए हैं, और 9 मिनट के अंदर अच्छा मेरे पास एक फरमाइश थी जो कि मुझे की है नज़ीर खसो, कहते हैं कि आप फायजा नहीं कहते हैं कि आप मंजूर सगरानी की आवाज़ में नाम है सॉन्ग का खिल सोना खिल, आप ये सॉन्ग प्ले करें। जवाब उन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो सॉन्ग आपने मुझे बताया है ना नज़ीर खुसो, आपने जो सॉन्ग बताया ये थोड़ा ओल्ड हो गया, ओल्ड टाइप हो गया, बंदा उठा हुआ भी बंदा सो जाएगा, हालांकि अभी तो उठने का टाइम है लेकिन अभी तो उठे हुए बंदे सुनेंगे। तो मैं आपको बोलती हूँ कोई उधम वाले सॉन्ग बताया करें, तो जो कि मैं आपको प्ले करूँगी और सुनाऊंगी। तो जी यहाँ पर आज आपने इतने सारे सॉन्ग मेरी पसंद के सुने, तो अभी भी आप मेरी पसंद का ही सॉन्ग सुनेंगे, और यहाँ पर डेडिकेट किया है हर एक सॉन्ग, तो मैंने आज आप सबको ही, क्योंकि डेडिकेट आप सबको ही मैंने सॉन्ग किए हैं अपने, तो अभी भी जो मैं लास्ट में सॉन्ग प्ले करती जाऊंगी तो वो भी मैं आप लोगों के लिए ही प्ले करूंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आज इतने सारे सॉन्ग हमने सुने हैं, सारे मेरी पसंद के सुने हैं, और क्योंकि आप लोगों ने अपने सॉन्ग नहीं बताया, शायद मेरा सवाल आप लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा से एक बात कहती हूँ, अगर आपको जवाब ये नहीं सोचा करें कि गलत भी है ठीक भी है तो कोई मसला नहीं, अगर गलत भी होगा तो भी कोई मसला नहीं है यार, और ये होता है कि कम से कम आप लोगों ने जवाब तो देते हैं, जवाब देने वाली लिस्ट में तो आ जाते हैं, तो ये कि डेडिकेट जब इतनी खुशी हो जाती है तो आप लोग भी मुझे जवाब दिया करें टाइमली और इस लिस्ट में शामिल हुआ करें मेरे साथ, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर एक सॉन्ग है जो मैं अभी प्ले करूँगी, और ये सॉन्ग है फलक शब्बीर एंड सारा खान का। तो अब आप सोचें वो कौन सा सॉन्ग है, सोचें क्योंकि लास्ट में मैं वो सॉन्ग करूँगी प्ले, क्योंकि लास्ट में जब वो मैं छोटा सा सॉन्ग है वो लास्ट में प्ले करते जाएंगे तो क्या ही बात है उस सॉन्ग की। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे टाइमली ज्वाइन करते हैं, मुझे मेरे साथ रहते हैं, तो मैं भी आप लोगों के साथ, अगर आप लोगों से बातें करने के लिए आती हूं तो सिर्फ इसी वजह से आती हूं कि यार आप लोगों के साथ एक नई बातें करने को मिलती हैं, एक हमारी जो टेंशन होती है वो थोड़ी खत्म हो जाती है, तो मैं आप लोगों से बातें कर रही होती हूं, तो अपने टेंशन को रिलीज करने के लिए ही आप और मैं एक साथ बात कर रहे होते हैं। 2 घंटे हमारे साथ में होते हैं, सुबह 11 से 1 बजे तक जैसा कि रहते हैं आप और मेरे साथ, तो मैं आपको बताऊं कि आप लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, ड्राइविंग करते हैं तो ये चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं अगर खुद ड्राइविंग करी होती ना, मैं खुद FM चलाती हूँ, मैं कहती हूँ यार मैं सुनूं RJ's को सुनूं, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था सॉन्ग्स ने सॉन्ग्स की, और उनके जो सवाल होते हैं उनका जवाब दें, तो ये चीज अच्छी लगती है। तो ऐसे ही आप जो है ना, अगर आप मेरे सवाल सुन रहे होते हैं ड्राइविंग के दौरान, आप ही आप उठे हैं, घर में हैं, जहाँ पर भी हैं, ऑफिस में, तो आज संडे है, छुट्टी होगी, अगर कोई वर्कआउट करने के लिए बाहर भी गया है तो कोई बात नहीं, अगर आप सुन रहे हैं मुझे ज्वाइन भी किया तो यार इससे अच्छी और क्या बात है, अगर आप मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे मुझसे बात कर रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, तो आप मुझे एक छोटा सा सवाल मेरा होता है वो आप जवाब दे दिया करें, दिमाग का कोई जवाब नहीं होता, वो दिमाग का कोई सवाल नहीं होता, वो एक आपने थोड़ा सा आंखें बंद करके भी अगर आप वो मेरा सवाल दोबारा से अपने जहन में रिपीट करेंगे तो आपको जवाब वैसे ही मिल जाएगा। तो बहुत आसान से सवाल लेके आती हूँ हमेशा हर संडे, तो इस संडे भी मैं नेक्स्ट संडे आऊंगी तब भी एक छोटा सा प्यार सा सवाल लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, तो आपने मुझे टाइमली जवाब देना होता है, और उसके साथ क्या करना है, अपने फरमाइश सॉन्ग जरूर बताया करें, ताकि अगर आपका जवाब ठीक हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक वो सॉन्ग प्ले हो जाएगा, तो इसका मतलब यही होगा कि आप समझ जाएंगे कि यार आपका जवाब बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पर टाइम होता है हमारे पास एक अल्लाह हाफिज करने का, टाटा बाय बाय करने का, क्योंकि मिलेंगे अभी जाएंगे तो अगले इतवार को दोबारा मिलेंगे ना भाई, तो अभी हम चलते हैं और यहाँ पर एक सॉन्ग मैं प्ले करती चलती हूँ, ये सब सॉन्ग जो है आपको लोगों के लिए डेडिकेट करती हूँ, आप सब जो मेरे साथ मौजूद थे पूरे 2 घंटे के लिए, मुझे बर्दाश्त किया जैसा कि मैंने आप लोगों को बर्दाश्त किया, अरे नहीं मजाक कर रही हूँ, खैर हंसते मुस्कुराते रहें, जिंदगी है और कब रुक जाए पता ही नहीं चलता एहसास का, तो कोई बात नहीं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप हमेशा आप लोग सारे खुश रहें, ऐसे आप लोग मेरे लिए दुआ किया करें, और मिलेंगे अगले इतवार में नए सवाल के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मैं यहाँ पर एक सवाल आपको बताने वो सवाल सॉरी सॉन्ग सुनाने लगी हूँ, सॉन्ग सुनेंगे साथ में, उसके बाद जाएंगे अपने अपने कामों पर, तो रहिएगा मेरे साथ और मिलेंगे अगले इतवार को एक नए सवाल के साथ। तो सॉन्ग कर दिया है जी मैंने प्ले, तो इस सॉन्ग को भी करते हैं।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते हमला रोकण जो हुक्म ॾेई छॾियो। ईरान ते लगातार ॿिनि हफ़्तनि ताईं जारी हमलनि बाद गुज़िरियल राति सदर ट्रंप हमलनि जी मंज़ूरी न ॾिनी। ख़बर एजेंसीअ मूजिबि इहो वाज़े न आहे त हमला हिकु ॾींहुं रोकिया विया आहिनि या जंगबंदी थी वई आहे, पर ॿिनि हफ़्तनि खां जारी हमलनि जो तसलसुल टुटी वियो आहे। सदर ट्रंप मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदे चयो त वटि हमला जारी रखण ऐं हुननि खे वधीक सख़्त करण जो इख़्तियार मौजूदु आहे। हमलनि सबबि ईरान में मुकमल तबाही थी सघे थी, पर अक़लमंदीअ वारी हिकमत अमली इहा आहे त ईरान सां डील कई वञे। सदर ट्रंप टियों ऐं चोथों भेरो बि सदारती इलेक्शन विढ़ण जी ख़्वाहिश जो इज़हार कयो। ईरान पारां अमेरिकी फ़ौज जी जारहियत ख़िलाफ़ अमेरिकी अॾनि ते जवाबी कार्रवाई में 11 रिफ्यूलिंग वेढ़ाक जहाज़ ऐं ड्रोन तबाह करण जी दावा। बाज़ारनि इनकलाब पंहिंजे बयान में चयो आहे त अमेरिकी अॾनि ते हमले में हैंगर में बीठल हिकु F-15 जहाज़, हिकु P-8 जहाज़, C-17 ट्रांसपोर्ट जहाज़, 8 ॿियनि रिफ्यूलिंग जहाज़नि समेत 17 ड्रोन तबाह करे छॾिया आहिनि।

उम्मीद तो मौजजों के बादशाह से है तुम्हारी उम्मीद तो मौजजों के बादशाह से है फिर क्यों परेशान हो तुम्हारे पास तो अल्लाह है सुनिब दंदड़ा तमाम खूबसूरत मासूमई सोने समातम मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम पुरकुल दुआओं के समंदर है चाहतों की बारिश लाजवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नीच से जाकर जमीन से आसमान से जिंदगी से मौत इंसान से ताकत उनसे खुशी दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों की सहमे सलामत रखे तो आमीन या रब्बल आलमीन बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं जी एफएम 88 नेट पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरू मीरपुर खास मटियारी सकरन हिरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डेज कैन ब्यूटी शो बिल्कुल सुना प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डेज कैन ब्यूटी शो में आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया प्रोग्राम में अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो भाई अगर आप लोग नहीं जानते कि प्रोग्राम आप लोगों तक कैसे और क्यों पहुंचाया जा रहा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोग्राम जो है आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो खूबसूरती की जमानत है जनाब आप लोगों के पास और अगर आप भी हसीन बनना चाहते हैं खूबसूरत बनना चाहते हैं पुरकशिश दिखना चाहते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिल्कुल आप लगा सकते हैं इसी के साथ साथ किस तरह के प्रोडक्ट्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स और क्यों आप इस्तेमाल करेंगे सब कुछ बताएंगे लेकिन कहते ना कहते नहीं जल्दी क्या है अभी तो हमने स्टार्ट किया तो करते हैं जी सर अपना तारफ सो प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान नाम तो सुना ही होगा तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मुखातिब भी जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए तो जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जल्दी से अपने हाल चाल बताते जाइए सो डियर लिसनर्स अंतकेफ हालत कैसे ही आपकी हालत है उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी तीन बजे तक यानी कि दो घंटे हमारे पास मौजूद होंगे इन दो घंटों में हम आप लोगों के साथ इन्नी शाली बातें करने वाले हैं तो चलिए जी रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ मजे करने के लिए और जनाब बहुत ज्यादा वाली बातें करने के लिए और इसी के साथ साथ फुल ऑन एंजॉय करने के लिए और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी ऐसे बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदर आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की समाल लाने के लिए तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की समाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही खूबसूरत सी हाँ जी कलाम के साथ सुनते हैं उसके बाद हम जैसे ही आवाज आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए

0: जी क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसी के साथ साथ आगाज इतना खूबसूरत हो चुका है, आप अंजाम की तो परवाह ही नहीं है। जी इसी साथ साथ आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताबन से। आपकी सुधरा के साथ मौजूद है मेरे साथ कौन है जी, बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे, लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक क्या पूछा जा रहा है। ओके जी, तो आज के अगर प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो आज मेरा आप लोगों से सवाल ये होने वाला है, आजकल हम जैसे ही सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे आमने सामने घूम रही होती है, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि भाई ये आजकल की जनरेशन जो है वो ज्यादातर जो है ना, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों के अंदर जो ना या तो शोर बढ़ता जा रहा है या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई अपनी जनरेशन का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हैं। तो मैं आज सोच रही थी कि आप लोगों से सवाल जो पूछा जाए प्रोग्राम का वो कुछ इस तरह होना चाहिए कि आप मुझे बताएं कि आप आने वाली अपनी जो जनरेशन होंगी, हमारी जो आने वाली जनरेशन होंगी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। हाँ जी, क्योंकि हमें जो लगता है आजकल जो हमारी जनरेशन के हालात चल रहे हैं आप सब लोग जानते होंगे, तो मुझे बताएं कि आप लोग अपनी आने वाली जनरेशन को क्या सबक देना चाहिए? मतलब क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, क्या ऐसी चीज जो कि आप बोलना चाहेंगे अपनी आने वाली जनरेशन को। इसी के साथ साथ अगर आप हमारा शो सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना या फिर घुनने वाले लिसनर से, यानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके आप हमें सुनते हैं, तो जनाब अपनी खामोशियों को तोड़ लीजिए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हो जाइए। क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज, आइए जी पेज को सर्च कीजिए, आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। और जैसे आप पेज को ऑन करेंगे आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एशियन जी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी। हाँ जी, पोस्ट मिल गई, चलिए पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज कैरिंग होती है, जितना शेयर करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। तो जल्दी जल्दी से पोस्ट को शेयर करते जाइए, बताइए आप हमारे साथ मौजूद हो रहा, हाँ आप जिंदा है ये भी पता होना चाहिए। ओके जी, इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से पूछ लिया कि आप मुझे बताइए जरा कि आप अपनी आने वाली जनरेशन को क्या जो है ना वो मैसेज देना चाहेंगे। हाँ जी, मैं जानना चाहूंगी। इसी के साथ साथ जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और बताइए कहाँ कहाँ पर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं, ताकि हमें ये पता चले कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप लोगों की खूबसूरती की बातें तो जनाब मैं करती हूँ, लेकिन ये भी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि खूबसूरती ऐसे तो नहीं मिलती ना। खूबसूरती के मामले में थोड़ा सा ऐसा सीन है कि आपने थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमें हमारी खूबसूरती मिल जाएगी, या अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी खूबसूरती की हिफाजत करें तो आप कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करें, ये आप लोगों को इस प्रोग्राम में बताया जाता है। ओके जी, तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तफसीलन बहुत ज्यादा वाली बातें बताएंगे, और इसी के साथ साथ अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर भी ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो तो वो कैसे होंगे वो भी बताएंगे, और आप क्या करेंगे, आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाएंगे और साथ साथ टॉपिक को फॉलो करते जाएंगे। और यहाँ पर आपके जो प्यारे प्यारे मैसेजेस आना स्टार्ट हो चुके हैं तो जी देख लेते हैं। आदिल हुसैन हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं। कहते हैं कि चुप हूँ कि तेरे नाम की इज्जत मुझे भी है, वरना तो पाओ कि इजाजत मुझे भी है, मैं खैर ख्वाहों से कभी कहता नहीं मगर सच ये है कि अपने आप से वहशत मुझे भी है, गम बांटना है काम मसीहा है मेरा नाम, पर क्या करूं कि आज जरूरत मुझे भी है, ये जंग वो नहीं कि हूँ मैं जिसका मुंतजर, वरना तो आरजुएं शहादत की मुझे भी है। क्या बात है जी, और कहते हैं हाँ जी आपको वेलकम कहा जाता है। नजीर कोसो बलोचिस्तान से हमारे साथ मौजूद है भाईजान, क्या कहते हैं कि हम लोग सिर्फ आसानियों से प्यार करते हैं और आसानियां भेजने वाले से प्यार नहीं करते, इसीलिए जब कोई मुश्किल आती है तो हमें समझ नहीं आती कि अब हम क्या करें। बिल्कुल जी, आपने देखें कितनी अच्छी बात शेयर कर दी हमारे साथ। वासा भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम वासा भाई, कैसे ठीक ठाक है, मजे में, और आप हमारा शो सुन रहे, कहते हैं मुझो दोस्त प्रोग्राम बुद्धि पयो शहजादो जलबाणी तवा बिनीन के वेलकम चौं था मोहब्बत हुआ एंड तवा जो मामा समाना में सुन रहे हैं, गुड आफ्टरनून वेलकम टू द शो, सुंदर सिस बन गई, बुआ जी कहां गया। अखलाक बलोच हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, कहते नाइस शो सच्ची बुदायो, और उसके अलावा है उदास लड़की कहती हाय फेवरेट नाथ, ओके प्यारली मंगरू हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, निदड़ी कहती हैं कि हेलो स्वीटी वेलकम टू शो, तबियत कैसी है प्यारी, मैं सफा ठीक, तांबुदा की आयो, मोहम्मद समान कहती माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और स्मार्टो गोपांग आ चुके हैं जी. वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, बिल्कुल ठीक ठाक है. कहते कंबर सिटी से आपको सुन रहा हूँ. वेरी नाइस वॉइस. प्लीज प्ले सॉन्ग होरिया होरिया दिल के माँ पले वींदम. अच्छा माँ कोशिश क्या थी होरिया होरिया यो गानो हलाए वेंदासी. उदास लड़की कहती रुको जरा मैं शर्मा लूँ. हाँ जी टॉपिक के ऊपर कहती है मैं शर्मा लूँ. ठीक है जी. कहती मैं क्या ही बोलूँ, आई एम चुप. नहीं नहीं आपको बोलना पड़ेगा, आप तो बोलिए. मैं चाहती हूँ जरूर बोलिए. उनका अलावा प्यार अली मंगरियो कहते सॉन्ग सुनाए सॉन्ग बिल्कुल तमाम की बुधराइना सी. अखलाक भाई कहते आंसर खाई पी बैठो दुनिया फानिया. अच्छा गुलाम मोहम्मद मरियम हमारे साथ हैं, यानी कि रुखसार मरियम हमारे साथ हैं. मीरपुर खासे कहती हैं आपका क्या हाल है जी, मैं ठीक हूँ. आपने शो की तारीफ कर दी उसके लिए बहुत शुक्रिया. किशोर भाई कहते हैं साईं पाण आए. बिल्कुल साईं पाण आए. साईं चवे थो तो तव्हां सभु अचो. ऐं पोस्ट खिलाए करे शेयर कंदा हलो. टॉपिक खे फॉलो कयो. दर्दी दिल कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम चंदा, बिल्कुल ठीक ठाक है. आप बताएं कैसी हैं. अहद अबासी हमारे साथ हैं. वालेकुम अस्सलाम. अब्दुल गफार डॉक्टर अब्दुल गफार हमारे साथ मौजूद हैं. वालेकुम अस्सलाम एंड खुशामदीद कहा जाता है. मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि आप अपनी आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे. क्या ऐसा मैसेज है जो कि आप चाहते हैं कि भाई ये हमारी आने वाली जनरेशन के नाम जाना चाहिए, बहुत जरूरी है. मुझे बताइए जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए. टाइम हो जाता है जरा, हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं. उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं. आप बिल्कुल यही बैठी रहिएगा, हिलना नहीं अपनी जगह से. और मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूं. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. व्हाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए.
1: GA FM 88 Network, Sindh ki Awaaz.
2: It's time to commercial break. Bhalikar Bhalikar, MQM Pakistan J Convenier, Dr. Khalid Maqbool Siddiqui, Janab Sanjay Pairwani, MNA, Janab Aminul Haq, MNA, I MQM Pakistan J Kayadat K Achar Chavi Jolaite, Mirpurkhas Me Acharte Dilji Gherayan Sa Bhalikar Kayuta, Para MQM Pakistan Zilo Mirpurkhas.
3: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
4: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
3: अब दर्द को कहें अलविदा.
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
3: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
4: दर्द, सोजिश
3: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है.
4: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
3: गर्दन और कमर की तकलीफ.

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: ये करे कमेंट, बातें तेरी दिल पे ना देती मेरे डेंट, ना करू तुझे ब्लॉक ना करू तुझे बैन, तू ना मेरा हेटर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमालु छो नथो करीं?
0: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

ख्याल रखना है तव्हांजी खूबसूरती में इज़ाफ़ो अची वेंदो आहे सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तव्हां लाज़मी ट्राए करे जो जिन माण्हुनि जे चहिरे ते निशान आहिनि एक्नी आहिनि ऐं खोड़ साड़ियूं नी ट्यूब जो तव्हांजे चहिरे खे परेशान कनि पियूं ऐं उन खां अलावा तव्हांजी खूबसूरती में रुकावट अचनि पियूं त तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लाज़मी ट्राए करे ॾिसो उन खां अलावा वाइट एस जी ब्यूटी क्रीम आहे त वाइट एस जी ब्यूटी क्रीम जी अगरि ॻाल्हि कयूं पिया त वाइट एस ब्यूटी क्रीम हिकु नाइट क्रीम आहे जंहिंखे तव्हां राति जे टाइम इस्तेमालु कंदा उन खां अलावा वाइट एस जी जेका ब्यूटी क्रीम आहे या नाइट क्रीम आहे त राति जे टाइम इस्तेमालु करण सां तव्हांखे कहिड़ा फ़ाइदा पहुची सघनि था सो वाइट एस ब्यूटी क्रीम जेका तव्हांजी स्किन खे सफ़ा वी आई पी बणाए छॾींदी आहे वाइट एस ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन सी ब्यूटी क्रीम है ये जल्द को नरम मुलायम और ताज़ा बनाने के लिए मदद देती है इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की खुश्की हो दाग धब्बे हो चेहरे की बेरोन की हो ये सारी चीजें कम हो जाती है जबकि आपकी जल्द जो है वो ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होना स्टार्ट हो जाती है तो लड़के हो लड़कियां हो आप सारे लोग ही वाइट एस ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और वाइट एस ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल करने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा यानी कि सोने से पहले अपना फेस वॉश कीजिए चाहे वाइट एस ब्यूटी सोप हो या फिर फेस वॉश हो इन दोनों चीजों में से कोई भी चीज आप अप्लाई करेंगे उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई जो है ना आप कितने अच्छे और कितने शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर चुके हैं तो वाइट एश ब्यूटी क्रीम भी ये नाइट क्रीम है तो रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे अगर हम यहाँ पर वाइट एश के फेस वॉश की बात करते हैं तो वाइट एश का जो फेस वॉश है ये जनाब विटामिन सी से तैयार किया गया है जब आप परचेज करेंगे तो आप लोगों को ये सोचेंगे ना कि वाइट एश का जो सोप है वो बिल्कुल डिटो कॉपी है वाइट एश ब्यूटी क्रीम तो ये फेस वॉश के मामले में आपको ये ना लगे कि भाई दुकानदार कहीं हमें चूना तो नहीं लगा रहा तो आपको बताती चलूं कि वाइट एज का जो फेस वॉश है ना वो ऑरेंज कलर का है वो विटामिन सी से तैयार किया गया है उसके ऊपर जो है ना वो ऑरेंजेस का आपको फोटो भी नजर आएगा और उसके अलावा ये आप बिल्कुल लगा सकते हैं आपको कोई धोखा नहीं देगा क्योंकि उसके ऊपर बिल्कुल वाज़े लिखा हुआ होगा वाइट एज विटामिन सी फेस वॉश जो कि आप इस्तेमाल करें बहुत ही क्रीमी सा फेस वॉश है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे तो जल्दी जल्दी से आप इस्तेमाल करते रहिए क्योंकि ये आप तमाम प्रोडक्ट जो है ये इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खूबसूरती आपको वापस मिल जाएगी और इस्तेमाल करने का ये फायदा आपको मिलेगा कि जब आप अपनी खूबसूरती को वापस लाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत से लोगों की खूबसूरती जो होती है वो कहीं गायब सी हो जाती है और वो इस बात में भी परेशान होते हैं कि भाई हाणे छा थींदो त हाणे बाबा इहो थींदो त तव्हां वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो तव्हांजे एरिया में नथा मिलनि परेशान छो आहियो बाबा डायल कंदा 03-12-50-25-907 03-12-50-25-907 या वरी 033-27-38-4809 नंबर आहे जेको तव्हां डायल करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते वाइट एज जा तमामु प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए सघो था मूंखे ॿुधायो त फेसबुक ते लाइव सही पई हले छो त मूंखे थोरो पंहिंजे नेटवर्क में मसलो लॻी पियो अगरि लाइव सही हले थी त ठीकु आहे न त पोइ थोरो घुचमुच कयूंसि

को शेयर करते रहिए. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावल से. ओके, क्या कह रहे हैं, आपके मैसेजेस हैं और आपकी बातें हैं. और यहाँ पर जी मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि आप अपनी आने वाली जनरेशंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जल्दी से बताइए. और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जी मीर मुमताज अली जतोई, वालेकुम अस्सलाम कहते सिस्टर. सिद्रा मुस्कान जी, माशाल्लाह जबरदस्त शो, गोट आगा खान जतोई लाड़काना से. मीर मुमताज अली जतोई, सागर जतोई और हे मुगेरी मोहम्मद मुदस्सर जतोई, सब भाइयों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है. दर्द दिल कहती है कि हाँ मैं भी जिंदा हूँ. माशाल्लाह जिंदा ही रहे. अमानुल्लाह शेख हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम. सिद्रा मुस्कान आप कैसी हैं? मैं सुन रहा हूँ कश्मीर से और मेरे साथ हैं उस्ताद नवाब शेख. आपकी बातें अच्छा कहते हैं, आपकी बातें खूब एंजॉय कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं. मेरी तरफ से पूरे कश्मीर वालों को बहुत सारी दुआएं. अल्लाह सलामत रखे, मुसलमानों को खुश रखे और आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे. थैंक यू सो मच भाई, आपको वेलकम कहा जाता है. और हैं जी अब्दुल अहद अब्बासी कहते हैं हम आने वाली जनरेशन को ना आने का मशवरा देंगे. अच्छा मशवरा है वैसे. अच्छा निधि कहती है कि टॉपिक मैं तो यही मैसेज दूंगी, कभी किसी पर यकीन नहीं करना इतनी जल्दी. वो तो हम भी ऐसे ही हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन का तो कुछ पता नहीं होगा ना, वो कितनी ज्यादा चालाक होंगी. तो उनको ऐसा कौन सा मशवरा हो जो कि देना चाहिए, मुझे ये लगता है, जल्दी बताइए. और हैं जी हमारे साथ ये चाचा खाले जुड़े जो कहते हैं सीनियर इफर. अच्छा कहते हैं सीनियर इफर्स, ट्रुथ स्पीक्स एंड ट्रुथ इन ट्रस्ट इन अल्लाह पाक ऑलवेज योर टॉपिक आंसर से जो बेटा. ओके जी बहुत बढ़िया, न दुआ न सलाम. और नखा अलावा स्मार्टू गोपाल कहते हैं टॉपिक आंसर, आने वाली जनरेशन को ये पैगाम है सिर्फ डिग्री हासिल करनी नहीं है बल्कि इल्म किरदार और इंसानियत हासिल करने वाले बनो. दुनिया तुम्हें तुम्हारी कामयाबी से पहचानेगी लेकिन तुम्हारा किरदार तुम्हें इज्जत दिलाएगा. टेक्नोलॉजी को अपना हाँ टूल बनाओ, अपना मुल्क नहीं अपना मालिक नहीं. सही सही, सवाल करने से मत डरो और गलती से सीखो और अपने ख्वाबों को सिर्फ देखो नहीं उनके लिए मेहनत करो. याद रखो कल की दुनिया उन्हीं लोगों की होगी जो आज लोगों को बेहतर बनने का फैसला करते हैं. ओके जी क्या बात है, बहुत जबरदस्त. और आदिल कहते हैं ये सॉन्ग लगाओ, थोड़ा नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे, अगर ये सही हो गया तो मैं आप सबके गाने लगा दूं. ठीक है. और नखा अलावा किशोर भाई कहते हैं कि टॉपिक पर मेरा हाथ जोड़कर यही इल्तिजा होगी कि ये तो भाई मेरे ख्याल में ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, तो ये आप इल्तिजा जो ना उनसे मत ही कीजिए. क्या पता वो आपकी आने वाली जनरेशन आपसे दो कदम आगे हो. और हो भी सकता है.

सांझ नदड़ी देख रही हूँ तभी तो बोल रही हूँ। पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और बताइए आप वाइट एज का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अली मुर्तजा कहते हैं गुड आफ्टरनून एंड वेलकम, कैफा हालुक या हबीबी, हालुक सफा भलाएं ताबुदा किया है।

ये उन्हनि माण्हुनि जी ॻाल्हि थी पई जेके वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कनि पिया, छा त समुझो बाबा। हाणे ॿुधायो कहिड़ो प्रोडक्ट लॻायो पिया। कावड़ न ख़तम कई त शहर छॾे वेंदोसां। अच्छा मोहम्मद सुमान कहते टॉपिक न्यू जनरेशन इतनी एक्सपर्ट है, दो चार हमें ही सुना देंगे। हाँ जी बात तो बिल्कुल आपकी सही है। और किशोर भाई कहते हैं कि आज छुट्टी के दिन आई हो, थोड़ा रेस्ट करने देती मुझे, कल करने दिया था ना, कहते मैं छुट्टी की तो मैंने छुट्टी की तो आपने जिद में ऐसा ही था। अच्छा दीदार अली बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक है, मजे में है। निदड़ी कहती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कर रही हूँ, करके मैं तो प्यारी एंड क्यूट बन गई हूँ, अब आप सब की बारी है, यूज करो और प्यारे प्यारे बन जाओ। क्या बात है भैया, निदड़ी जो चवन वठो ता सब। मुस्कान लाड़कना की पहचान, कैसी आप और आपकी तबीयत कैसी है? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, मैं भी जिंदा हूँ और आपके साथ साथ। क्या बात है जी, आपको वेलकम एंड खुश आमदीद का।

वाह साईं वाह ॾाढो भलो गानो तव्हां एंजॉय कयो पिया हिन अलावा प्रोग्राम ॿुधो पिया वाइटेश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड आहे बाबा वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तरफ़ां तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट लॻायो पिया जल्दी ॿुधायो जी मूंखे ख़बर पई त केॾा जो मुंहिंजा सोणा लिसनर आहिनि कहिड़ो कहिड़ो प्रोडक्ट लॻाइनि पिया सो वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हांखे ॾिठो बि न केॾा भला भला प्रोडक्ट मिलनि पिया ऐं वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगरि तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइणु चाहियो था त तव्हांखे जेको नंबर ॿुधायां पई हुन नंबर ते तव्हां राबितो कयो नंबर अञा ताईं अगरि तव्हां नोट नाहे कयो त नंबर नोट करे वठो काइंडली ओके जी नंबर आहे 03-12-50-205-907 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 हीउ नंबर स्टाइल कयो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते वाइटी जा प्रोडक्ट अवेलेबल करायो ऐं सफ़ा सुहिणा थी वञो शेयर कयो बाबा

सलाम थासली जुतई वालेकुम अस्सलाम अदी सिद्रा मुस्कान भेणो खुश आयो अल्लाह पाक तव्हां खे खुश रखे हमेशा मुस्कुराईंदा रहो पर असां खे भी याद कंदा हलो वोट आगा खान जतोई लाड़काने खान मीर मुमताज अली जतोई और एस मुमताज ऐं मोहम्मद मुदस्सिर जतोई भाउनि जूं मोहबतूं आहिनि बाबा तव्हां खे वेलकम ऐं खुशामदीद चऊं था।

अच्छा अली मुर्तजा कहते हैं कि ऐसा लगता है जितना जोर फायदे बताने में लगाते हो उतना जोर दिलाने में लगाती तो आज मैं भी गोरा चिट्टा हो जाता। ये थोड़ी कोशिश आपने भी करनी है ना, एफर्ट्स लगाया करें। अच्छा मीर तारिक बलोच हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम। तवां जो प्रोग्राम बुधू पया मोहब्बतू भांजू, वेलकम चोंदा तवां के आदिल के दे सिदरा। ये मेरा गाना लगाना चलें, ठीक है देखते हैं। और दर्दे दिल लिखते हैं कि लोग चेहरों को याद रखते हैं, रब दिलों की नियतें जानता है, बस इसी यकीन ने मुझे हर गम में मुस्कुराना सिखा दिया। क्या बात है जी, क्या बात। और बख्तली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, वेलकम। मोहम्मद मीरन जखरानी भाई हमें सुन रहे हैं, जेकब आबाद से वेलकम करते हैं। चाचा खालिद कहते हैं मैंने भी ऊपर सलाम किया है बट ऊपर चला गया होगा। हाँ शायद ऐसा होगा। फिर अच्छा दीदार अली बिरोही कहते हैं अच्छा एक गजल सुनो, चाहेंगे तुम्हें दिलो जान से हम, तेरी कसम ये गजल भी खत्म।

0: हाँ न्यूज़ ताईं तव्हांखे गानो ॿुधणो पवंदो बाबा भले छा बि को गानो न मिटाईंदो पोस्ट के लाइक शेयर कयो जल्दी जल्दी जल्दी ॿुधायो तव्हां पंहिंजी अचण वारी जनरेशन खे कहिड़ो मैसेज ॾींदा बाबा छा चवंदा अचण वारी जनरेशन खे बाबा जल्दी ॿुधायो हुन खां अलावा टॉपिक खे फॉलो कयो ऐं ॿुधायो वाई चेस जो कहिड़ो प्रोडक्ट लॻायो पिया ऐं
1: Dr. Mumbai.
2: Fakiri analgesic cream.

ईरान पारां अमेरिकी जारियत खिलाफ़ अमेरिकी अॾनि ते जवाबी हमलनि में अमेरिका जो वॾो नुक़सान करण जी दावा। बाज़ारनि इनकलाब मूजिबि अमेरिका ख़िलाफ़ दिफ़ाई कार्रवाई दौरान अमेरिका जा रिफ्यूलिंग वेढ़ा जहाज़ ऐं ड्रोन तबाह कया। हमलनि में अमेरिका जो हैंगर में बीठल हिकु F-15 जहाज़, हिकु P-8 जहाज़, C-17 ट्रांसपोर्ट जहाज़, 8 ॿियनि रिफ्यूलिंग जहाज़नि समेत 17 ड्रोन तबाह थिया आहिनि। हमलनि में अमेरिका जो ॿियो बि घणो नुक़सान थियो आहे।

0: सिंधु दरिया ते धाड़े ए जलालपुर कैनाल खिलाफ सिंधु
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर
2: टू कमर्शियल
3: सकरण के हो तो आवाज
2: एन क्यू एम पाकिस्तान जी कन्वीनियंट
4: सुनते रहो डॉक्टर एफएम 90.8
5: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो
6: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं
5: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा
6: बिल्कुलु फ़क़ीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी
5: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
6: न अदा असाबनि जो सूर जोड़नि जो सूर कंध ऐं चेल जी तकलीफ़ सट धक लॻण पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे
5: इस्तेमाल कीअं कजे
6: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो जी हा फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर खां आराम हर रोज हर कदम अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: हमने तो ये देखा है कि लड़कियों की जिस जगह शादी होती है उस घर को

कुछ अखलाक भाई कहते हैं कि सिद्रा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेल एंड फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल जी दोनों के लिए है। जितने भी आपको प्रोडक्ट बता दूं ना, चाहे वो व्हाइटिश की हो या फिर डी स्किन के हो, ये सब लोगों के लिए, यानी कि मर्द हजरात भी लगा सकते हैं और खवातीन भी लगा सकती हैं।

हाँ भाई सहरन जी वाई भी कुछ अलग आए जीरा बुधी कभी मजो ही दो दीदार अली बिरोही कहते हैं हमें अपने उन्हें लूटा गेरों को हम खुद लूट लेते सही बात है। अच्छा मेरी तारिक बलोच हमारे साथ हैं। हेलो

ओके जी, दर्द दिल के लिए टॉपिक चंदा, मैं तो बस नियत साफ रखो कहूंगी, सबर को अपना साथी बना लो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें वक्त से पहले भी नहीं मिलेगा और वक्त के बाद भी नहीं। अच्छा, ये मोटिवेशन नहीं पर थोड़ी समझ में घट आई। अच्छा, मैसेज शायद कुछ एने उड़े थी भाई।

हा न अख्यू बरंस थी मन यो एक नॉर्मल मानू तो नो थी सके न सो असो बुध आज झंडन जो अख्यू बरंदू सो समझी वह हूं।

खोसो हमारे साथ ही। वालेकुम अस्सलाम, हैदराबाद से प्रोग्राम सुन रहे हैं, जबरदस्त प्रोग्राम है आपका, थैंक यू जी, थैंक यू। अनवर भाई कहते हैं टॉपिक आंसर, बड़ा आदमी वो नहीं जो ज्यादा पैसे कमाए, बल्कि वो है जिसके पास बैठकर कोई खुद को छोटा ना समझे, लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, सच्चाई और ईमानदारी को अपना सहारा बनाए। आने वाला कल आपका है, लेकिन इससे खूबसूरत और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी आप ही के शानों पर है। वाह साईं वाह, मजो अच्छी है, भलो मैसेज हो। अच्छा, अली मुतज़ा कहते हैं टॉपिक पर, आने वाली जनरेशन के लिए एक ही मैसेज है कि कुछ पल अपने बड़ों के साथ भी बैठा करो, क्योंकि हर चीज गूगल और मोबाइल से नहीं मिलती। क्या पता आने वाली जनरेशन वॾनि सां सफ़ा वेहण बंदि करे छॾनि, असां ई अॼुकल्ह कोन था वेहूं। हो त अलाए छा हूंदा, नहीं मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब सबके साथ बैठकर अच्छे से बात करूँ, लेकिन फिर होता ये कि कांड हो जाता है। फिर कांड से बचने के लिए हम जरा पासो करते हैं।

हम तो खुद बच्चे हैं, जवाब नहीं है पता सिद्रा, आप बड़ों से पूछें जवाब, जी वही सब बताते जा रहे हैं। दीदार अली बिरोही आपने शायरी भेजी, बहुत शुक्रिया। पैनल की जानिब जरा नजर घुमाते। ओके जी, आप बताएं जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में क्या इरादा रखा है, कब इस्तेमाल करेंगे? बधाई हो मुखे, मुखे सब खबर हो जन गुरु जी।

वाह। अच्छा ये कश्मोर से खिलाक भाई है, कहते हाय सिद्रा प्लीज प्ले चाहता सोनो आ भाई शमन हलायू था बाबा। मीरपुर खास अब्दुल्ला महर, वालेकुम अस्सलाम। मीरपुर खास अब्दुल्ला महर भाई कहते हैं कि वाइटेश ब्यूटी क्रीम अच्छी है, वाइटेश ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बात है जी, बहुत बेहतरीन। और कहते हैं अब्दुल्ला महर और उसके साथ हैं जी अगर साथ कोई भी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, शो की तारीफ करें, बहुत शुक्रिया। आशिक अली मलाह हैं, कहते हैं बकर अबरों से आपका शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और फादली डहरी हैं, सऊद डहरी फ्रॉम नवाब शाह, सलामती शो तवाजो नाइस आए, वालेकुम अस्सलाम, भाजू मोबितू आए, ये हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा मुस्कान जी, आई एम फादली लाशारी, काफी टाइम के बाद आज आपके शो में शामिल हो रहा हूँ, सॉन्ग सुनाए ये जो मेरा इश्क है पोइट्री के साथ, अस्सलाम ऑल लिसनर्स, ओके भा कोशिश कयूं था। और उनका अलावा जेको आज तो तमा ही गानों बुधो आई हिते टाइम भी थियो आता सा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठू। हाँ जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठू थाना का पर वापसी जल्दी तमा देती हूं तमा सफाई ते बैठा हो जो पानी जगह का हिल जो नमा ओही वनी ओही मोटांती सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एश एंड दी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हेलो जी ता मी सोना थू

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

मोगरी रमजान भाई भी असे गड आई रमजान बाद आज मोहब्बतू एन प्रोग्राम उदो पया और अनवर भाई के गानो वणी वयो आए वाह छा गाल कजे ए मनसारी कहते हैं कि सोनो थेण सा अमीरन वारी फीलिंग अचे थी गारंटी दो लिखत में अचो दे लिखी जावा

काश असां बि भला भला प्रोडक्ट खणूं त हीउ तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम ट्राए करे ॾिसो, तव्हांखे सफ़ा मज़ो अची वेंदो।

ओगटी बत्तली सियाल भात असां सां गॾु मौजूदु आहियो मोहबत वाइन तव्हांजो बाबा प्रोग्राम ॿुधो पियो अच्छा मोहम्मद ज़मान भाई कहते हैं जहाँ पे एक आने वाली जनरेशन को मैसेज है कि मेरी तरह वाइट एश एंड डी स्किन के प्रोडक्ट्स यूज करके खुद को साईं चवंदा पाण खे चोरी जो चंड बणायो आज की लड़कियां रश करेंगी आपके ऊपर अच्छा छो लड़कियां भी त पो हणंदियूं न लड़कियां छो न हणंदियूं लड़कियां भी हणनि लड़का भी हणनि सभु हणो बाबा वाइट एज जा प्रोडक्ट ऐं डी स्किन जा प्रोडक्ट सही आहे जे कोई बि कंहिं ते रश न करे सभु सुहिणा हुजनि कि मैं और शीजा सीधी बात करती हैं बट लोगों को लगता है हम उनकी हकीकत आवे अब लोगों को क्या लग रहा है ये तो हम नहीं सोचते ना

मनैया गाला। अरे फजीला सिंधी हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी संडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर, कैसी हो? और सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम और कायनात और सब स्वीट लड़कियों को। ओके जी, मैं ठीक हूँ और सबको सलाम आपका पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया फजीला, आप हमारे साथ मौजूद है। साथ ही सलाम आप ही जाना कि फादली लाशारी पोइट्री लिखते हैं कि ना मंजिल मिले ना रास्ते मिले ना कभी तेरे वास्ते मिले कि जब भी मिले बस लफ्जों में मिले कभी तेरे रूबरू ना मिले। वाह वाह वाह वाह। अच्छा चाचा खालिद तवा गाने जी फरमाइश कया ठीका हलायूं था बाबा सबर कयो। आशिक अली मला हमारे साथ ही, आशिक अली मला भा तांजो मोहब्बतवान प्रोग्राम बुधो पया सोनी के आप ही जान में भी आ गई आप ही में आपको आपको भी सुन रही हूं और उस दिन ओके एंजॉय करो वैसे मजा आया। और जाकिर हमारे साथ हैं, जाकिर फ्रॉम कोटली। ओके जाकिर भाई आपको वेलकम कहा जाता है। सजाद अली जमाली है नवाब शाह से कहते सॉन्ग सुनाए मुमताज मोलाई। मुमताज मोलाई जी कौन है थोड़ो रेस्ट करे पयो उनके भी घुराए वठनासी पर थोड़ो न में देर आए। और हमारे साथ हैं ये हवायू सिद्रा जी, आप कैसी? हमारा मैसेज ही मैसेज ही लेट पड़ रही है। 78 मोरी से राजा हमीरचंद है, किशोर कुमार हीरा भाई और पवन राधो महर और अकबर बाबर प्लीज प्ले फोजिया मरवाड़ी सॉन्ग चलें भामा। कोशिश क्या तांजी पसंद जो गानों भी हलाए वी तवा जो मैसेज बस मां कोशिश कनिया सभी तकड़ा तकड़ा मैसेज पढ़ा पर किथे किथे थोड़ो रहजी वेंदा है तो माजरत कयूं था। गानो शमन जो हलायो आए ना गाने के बुधंदी डी स्किन ब्यूटी क्रीम किथे पोती बाबा बुधायो मुके तांजे गोठ में मिले थी कोन। ये हमारे साथ हाय सिस्टर आप कैसी आई है मोहम्मद अली जोगी फ्रॉम रूहल फकीर। मोहम्मद अली जोगी भा तवा के चौंता भली करी आया चोनी की थी आप ही मैं और मम्मा वाह वाह वाह वाह पापा भी गए थे माशाल्लाह चोनी की थी आप ही वो भी वाह सही वाह वाह सही वाह। अच्छा यकीन करना मतलब कुछ मानों जी आदत होंगी ना जे के मानों के खुश दिसी वरी सोची ना उन्होंने के शायद असर थी दो तो बाबा ही छो खुश आए ने या असा खुश होना है ऐ मां वरी मानों के दिसी करे खुश थी मां जने यार सब को खुश रहे जिंदगी जो तो मां वरी उन मानों के जेके मतलब उदास होना है जेके वरी बुदाई ना तब बस जिंदगी में है कुछ हले पयो उदास आयो परेशान है मचने यार जिंदगी सफा नंडड़ी आ खुश थी गुजारियो खिलो गालायो पाने जिंदगी के इंजॉय कयो आई जिंदगी एतरी नंडड़ी आ न जरी तवां के इन गाल जो एहसास न तडी जिंदगी ता जथन मा निकरी चुकी होनी सो जिंदगी के महसूस कयो इंजॉय कयो आई पांजो ख्याल रखो पाने खूबसूरती जो ख्याल रखो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा कर ता के डी स्किन फेस वॉश भी मिली पयो लाजमी वठ जो

हाँ भाई डिप्रेशन डिप्रेशन अब्दुल गफार भाई हमारे साथ है, खुश आमदीद वेलकम करते हैं प्यारे भाई को। वैसे ही बताएं आजकल आपकी फेवरेट मीम कौन सी चल रही है? सुमाटू गोपांग आपका गाना जो था वो बताएं जरा कौन सा गाना था, अभी नहीं तो 5 बजे वाले प्रोग्राम में लगा देंगे। और लखमीर अबड़ो हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम अदर, कहते हैं कराची कायदाबाद से हमारे साथी, हाय सदरा केड़ा हाल है नवा जा, दुआ आहे तो हमेशा जियां खुश हुंदा, आज टाइम मिलियो आहे प्रोग्राम में शामिल थियण जो, संडे आहे न 2 बजे छुट्टी थी, सोचो अज सिदरा जे प्रोग्राम में शामिल थियां, शमन जो गानो बुधराए जो, शमन जो गानो हले पयो बाबा, आई तवां के चऊं था भली करी आया, तां जो मोहब्बतूं आइन, आई तवां चयो आहे डेडिकेट मामा नदीम अबड़ो खे, ओके जी अच्छा। अख्तियार अली सिंधी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम भाई जान, खुश है। और मामा समान की थी साइलेंट मैसेज पढ़िएगा बुआ जी, ना बाबा यो साइलेंट पढ़ने जड़ो कोने को। आई अगर तमा एत्रो ही चाहियो था तो डी स्किन जा प्रोडक्ट हुजन या वाइट एज जा प्रोडक्ट हुजन तो तमा दुकान खोले बैठो, समझो था जो फायदा अच्छा। हाले सुल्तान हमारे साथ हैं, हाले सुल्तान वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे?

दीदार अली बिरोही पुराने लिसनर कहाँ गए? हाँ भाई पता नहीं, किसी की शादी हो गई, किसी की जॉब लग गई, किसी को क्या हो गया, किसी को क्या हो गया। अब सारे लोग हमेशा तो हमारे साथ जिंदगी में नहीं रहते ना, इसीलिए कुछ जाते हैं तो कुछ आ जाते हैं। हाले सुल्तान हमारे साथ कहते हैं, आई एम लिसनिंग योर शो, थैंक यू वेरी मच जी, खुशामदी। वक्त अली सियाल भाई, थैंक यू। न बाबा तव्हां जेको नंबर ॿुधायां पई न, नंबर ते राबितो ज़रूर करे वठिजो। अगरि तव्हां कॉल नथा करे सघो, कॉल तव्हांखे करणु ॾाढी मुश्किल लॻे थी, त तव्हां हिकिड़ो नंढिड़ो मैसेज छॾे ॾियो ऐं हुन मैसेज में लिखो बाबा फलाणी जॻह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम या वर वाइट एज जा प्रोडक्ट कोन था मिलनि, त जीअं हू अवेलेबल कराए सघे। हू तव्हांखे रिस्पॉन्स ॾींदा, चाहे तव्हां कॉल कयो या वरी तव्हां मैसेज कयो।

सुडीस स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां लॻाइण चाहियो था त बाबा दिलि खोले लॻायो ऐं पंहिंजे प्रिय प्यारनि खे गिफ्ट करणु चाहियो था त उहो बि ज़रूर कजो छो त तव्हां सां गॾु गॾु तव्हांजा जेके प्यारा आहिनि उहे बि सोणा हुजनि न उहो ई ॻाल्हि मज़ो ॾींदी आहे

मेरा चाचा खालिद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम भल्लो बनाए छो आप भल्लो बनाए छो सही रमजान भाई कहते हैं थैंक यू जी थैंक यू बहुत शुक्रिया।

ओके जी फहद बलोच बात तमाम बेस से गुड मौजूद है मोहब्बतूं तमाम जो अच्छा त चो लड़कियां भी हणन लड़का भी हणन नाइस लाइन हार ना सबनी चलाया बाबा सबनी के कचड़ो साव आए वरी मां सोचिंदी आ त बेचारा छोकरा जेके दुख कना हुंदा त हाने असा के छो न था बाबा चो ताने असा भी हणो डी स्किन प्यूरी क्रीम या वाइटेज प्रोडक्ट हाने मर्द भी लगाएं मायूं भी लगाएं लकड़ा लकड़ियूं सब लगाएं समझो था

जी जी दर्द दिल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आपके जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। निधि कहती हैं कि शीजा और मैं शो में होते हैं, मूड और शो अच्छा। सही बात है, वैसे यहाँ पर मोटू कौन और पतलू कौन हुआ? अच्छा, उसके अलावा अखलाक भाई सिर्फ हंसते हैं, जो भी देखो अखलाक भाई का कमेंट उसमें लिखा होता है हा हा हा हा हा। कुछ और भी लिखे जाकिर भाई हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया जाकिर भाई। मेहरापुर से हाफिज नईम है, वालेकुम अस्सलाम बाजी। वैसे तो आपका प्रोग्राम पता नहीं कब से सुन रहा हूँ, लेकिन शामिल आज हो रहा हूँ। मेहरापुर से हाफिज नईम, वालेकुम अस्सलाम जी, आपको पहले तो कहते हैं और बहुत शुक्रिया। वैसे तो कब से आप हमारा शो सुन रहे हैं, आप जानते होंगे कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और वाई चेज के प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके मेहरापुर में मिल रहे हैं नहीं। नेक्स्ट टाइम मैसेज करें तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है।

0: हाथ धाए लगते हैं कि उसने कहा बहुत देखे हैं तेरे जैसे. हमने कहा ब्रांड हो कॉपी तो होगी. हाउ सही सही आयता पानी जगह थे. ओके सो हेट खोड़ सके तुम्हारा जाने कॉमेंट आए साइमन जो टाइम थी वही है टेम थी पापा टेम थी सजाद अली भा तुम जो मोबित हुआ प्रोग्राम बुध पे तुम्हें वही ज्वाइन क्यों था अस पंजी बजे वाली प्रोग्राम में गुलाम इधर फुल पोटो भा तुम जो भी मोबित हुआ प्रोग्राम बुध पे पंजी बजे ज्वाइन कजो
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Jaldi allergy aur kharish ke liye

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ट्रंप मन बाद ईरान ते हमला रोके छा अमेरिकी मीडिया मुजिब सदर ट्रंप पेट्रार्ट दिफाई विदाय से जखीरन में घटाई अरब इतिहादन के खदशन बाद ईरान खिलाफ कार्रवाई न करण जो फैसलो कयो आहे। व्हाइट हाउस मुजिब सदर ट्रंप सदाई तकरार के सफारती हल के तरजीह डी है जैसे ईरान अब अरब इतिहादन खिलाफ शिदत से बधल कार्रवाई जारी रखू तो सदर ट्रंप सब ऑप्शन मौजूद है ईरान के लिए बेहतर है तो गालन वो रस्तों इख्तियार करें। अमेरिका पारा हमला बंद करण बाद ईरान भी अमेरिका खिलाफ कार्रवाई रोके छूं। ईरानी फौज चवे तो अमेरिका बिन रातन का हमला ना कया जैसे बाद ईरान बेजवाबी हमला रोके छा अमेरिका थकड़ी पो है अमेरिका वट का भी वाजे हिकमत अमली ना दिफाई हमलन में अमेरिका जो घणो नुकसान थो है 200 का अमेरिकी फौजी मारजी वा अमेरिका भी हमला शुरू कया तो जंग पखड़ी वी अमेरिका के इसराइली पॉलिसीज का मुतासर थी फैसला न करण घुर्ज। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेन्स और फौजी सरबराह जनरल डीन कैन ईरान खिलाफ कार्रवाई में शिदत आनण से खदशा जाहिर कर छा। अमेरिकी खबर इदारे CNN मुजिब सदर ट्रंप वट थियल आला सतह इजलास में नायब सदर जे डी वेन्स और जनरल डीन कैन खदशन बाबत आगाह किया हो। जनरल डीन कैन हथियार के जखीरन में घटाई और बेन मनफी असर बाबत खदशा जाहिर किया। नायब सदर जे डी वेन्स भी जंग में शिदत आनण वाले इम्कान से खदशा दिखा हुआ। बलोचिस्तान में हिंदुस्तानी फितने खिलाफ ऑपरेशन अल अजम जारी वधिक टे दहशतगर्द मारजी वे ऑपरेशन दौरान मारजी वाले दहशतगर्दन जंग वधी 16 थी वयो। सिक्योरिटी दरिन मुजिब बलोचिस्तान में ऑपरेशन अल अजम तहत सिक्योरिटी फोर्सिस जो कार्रवाई जारी आहिन। ऑपरेशन अल अजम तहत जारी ऑपरेशन में नवताई भारतीय फितने जा 16 दहशतगर्द ऑपरेशन दौरान कुली कडवाणी खडपूचा और मसोंग में भारतीय हामी दहशतगर्दन के वो नुकसान पहुंतो है। दहशतगर्दन के मुख्तलिफ थाकन के तबाह कर बारूदी मवाद हथियार हथ क्या वाया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दन के खात्मे तीन फोर्सिस जो कार्रवाई जारी रहंद। सिंध जो विरहांगो कदें भी नींद कुछ मानून के शोषण से ध्यान ना डींदा MQM सदाई हुकूमत में रही है कराची में कम रुगो पीपल्स पार्टी ही कराया है। कराची में मीडिया से गाले सुबह नासिर शाह चवे तो कराची में रस्तन और ड्रेनेज जो कम हली रो है पैसा भी रखल है वफाकी हुकूमत कराची के लिए कुछ भी ना रखो। मुर्तदाबाद चो तो शहर में बरसाती नालन की सफाई वो कम जारी है रस्तन की सूरत हाल भी बेहतर थी है। मुल्क में गैर कानूनी तौर तरसल अफगान की वापसी जो सिलसिलो जारी 1,826 अफगान के देह रवानो किया वो दस्तावेज मुजिब गुजर 24 कलाक दौरान POR कार्ड होल्डर 202 अफगान मुहाजिरन के वापस मोकलो वो है। 1,001 गैर कानूनी तौर तरसल अफगान के वापस डे मोकलो वो KP के रस्ते 190 अफगान के डिपोर्ट किया वो 946,898 गैर कानूनी तौर तरसल अफगान के वापस मोकलो वो है। वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी जो तुर्बत में FC बलोचिस्तान दखण हेडक्वार्टर जो दौरो मोहसिन नकवी FC के जदीद अस्पताल जो सताह कर घर वजीर डॉक्टर्स नर्सिस और तिबी अमले से मुलाकात कर इंसानियत की भरपूर खिदमत की हिदायत कई। घर वजीर OPD मुख्तलिफ वार्ड्स MRI CT स्कैन रूम्स और ऑपरेशन थिएटर्स जो मुआयनो किया। मोहसिन नकवी चो तो FC अस्पताल के फंक्शनल है तुर्बत में इलाज की जदीद सहूलत से लैस अस्पताल की सख्त जरूरत हुई तुर्बत की मकामी आबादी के भी इलाज जो बेहतरीन सहूलतू मिलंद वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी के अस्पताल में फराहम कल तिबी सहूलत बाबत ब्रीफिंग डी वही। सदर आसिफ अली जरदारी 71 साल मुख्तलिफ शहर में पीपल्स पार्टी पारा सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह जा केक काटा वह अगवान और कारकुनन पारा बाधाय। सिंधु दरिया से धाड़े जलालपुर कैनाल खिलाफ सिंधु यूनाइटेड पार्टी जा मुख्तलिफ शहर में मुजाहिरा सखर खैरपुर कंदकोट जैकबाबाद शहदादकोट और सेवन में एहतजाज सन दौर।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: GAFM 88.1

भली कार MQM पाकिस्तान जे कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जनाब संजय पैरवानी MNA जनाब अमीनुल हक MNA MQM पाकिस्तान जी कयादत के आचर 26 जुलाई ते मीरपुर खास में अचर ते दिल जी गहराइयन सा भली कार कयूं था 12 MQM पाकिस्तान जिलो मीरपुर खास।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमालु छो नथो करीं?
0: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: It's 3:15 p.m.
3: This time check is brought to you by
1: White Ash Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz a product by Biocon International Pakistan
4: सिंध के माथे का झूमर
0: DFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज
5: जरूरी थोड़ी है कि आप जिस चीज में अच्छे हो उसी को अपना करियर बनाएं I realized I was made for music
6: जब तक मैं जीता हूं तो वो सब कुछ करोगे और सुनोगे जो मैं चाहूं

0: परवरिश देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: मेरा फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
2: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
2: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
2: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
2: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

की हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: GFM 88
3: नेटवर्क
5: सिंध की आवाज।

में थींदड़ एहतजाजनि पुठियां भारत जो हथु निकितो। शरपसंदनि खे भारतीय फंडिंग जा सबूत साम्हूं अची विया। फोर्सिस हथां गिरफ़्तार हिकु शरपसंद जो वास्तो बि भारत सां निकितो। सुषमा वारे वफ़ाकी वज़ीर अता तारा चयो आहे त ग़लति ॼाण पखिड़ींदड़ समूरे नेटवर्क जो तालुक़ु भारत सां आहे। साज़िशी अंसरनि कश्मीर जो पाकिस्तान सां रिश्तो कमज़ोर करण जी नाकाम कोशिश कई। पाबंदी वरियल जमात जो चूंडुनि में हिसो न वठणु भारत नवाज़ हुअण जो सबूत आहे। जथनि ऐं कानून हथ में खणंदड़नि खे सोशल मीडिया ज़रिए हथी ॾिनी वई। पाकिस्तान ऐं पाकिस्तानी एजेंसीअ बाबति गुमराह कंदड़ प्रोपेगंडा कई वई। कश्मीर में डफेट पखेड़नि जूं नाकाम कोशिशूं कयूं वयूं।

ईरान ते हमलनि में शिदत वारे मामले ते अमेरिकी क़यादत इख़्तिलाफ़नि जो शिकार नायब सदर जे डी वेन्स ऐं फ़ौजी सरबराह जेंकिन ईरान ख़िलाफ़ जंग में शिदत ते ख़दशनि खां सदर ट्रंप खे आगाह करे छॾियो। CNN मूजिबि जनरल जेंकिन आला सतह इजलास में सदर ट्रंप खे ईरान ख़िलाफ़ इम्कानी फ़ौजी कार्रवाइनि बाबति नतीजनि ऐं ख़तरनि खां आगाह कयो, हथियारनि जे ज़खीरनि में घटिताई ऐं ॿियनि चैलेंजेस बाबति बि ख़दशा रखिया। नायब सदर जे डी वेन्स बि ख़िते में तादिन जे ख़दशनि बाबति सदर खे आगाही ॾिनी। अमेरिकी फ़ौज सदर डोनाल्ड ट्रंप जे हुकमनि बाद ईरान ते हमला रोके छॾिया। अमेरिकी मीडिया मूजिबि सदर ट्रंप पेट्रियाट दिफ़ाई मिज़ाइल जे ज़खीरनि में घटिताई ऐं अरब इतिहादनि जे ख़दशनि बाद ईरान ख़िलाफ़ वधीक कार्रवायूं न करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। व्हाइट हाउस मूजिबि सदर ट्रंप सदाई तकरार जे सफ़ारती हल खे तरजीह ॾिनी आहे। जेकॾहिं ईरान आबिनाए हरमूज़ ऐं इतिहादनि ख़िलाफ़ शिदत ते ॿधल कार्रवायूं जारी रखियूं त सदर ट्रंप वटि सभु ऑप्शन मौजूदु आहिनि। ईरान जे लाइ बहितर आहे त ॻाल्हियुनि वारो रस्तो इख़्तियार करे

अमेरिका पारां हमला बंद करण बाद ईरान बि अमेरिका ख़िलाफ़ कार्रवाई रोके छॾियूं। ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमेरिका ॿिनि रातनि खां हमला नाहिनि कया, जंहिं बाद ईरान बि जवाबी हमला रोके छॾिया आहिनि। अमेरिका थकी पियो आहे, अमेरिका वटि का बि वाज़े हिकमत अमली नाहे। दिफ़ाई हमलनि में अमेरिका जो घणो नुक़सानु थियो आहे, 200 खां वधीक अमेरिकी फ़ौजी मारिजी विया आहिनि। अमेरिका ॿीहर हमला शुरू कया त जंग वधीक पकड़िजी वेंदी। अमेरिका खे इसराइली पॉलिसीज़ खां मुतासिर थी फ़ैसिला न करणु घुरिजनि।

सिंध जो विरहांगो कॾहिं बि न थींदो, कुझु माण्हुनि जे शोषण ते ध्यानु नाहियूं ॾींदा। एम क्यू एम सदाई हुकूमत में रही आहे, कराचीअ में कम रुगो पीपल्स पार्टी करायो आहे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सूबेदारु नासिर शाह चयो आहे त कराचीअ में रस्तनि ऐं ड्रेनेज जो कमु हली रहियो आहे, पैसा बि रखियल आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत कराचीअ जे लाइ कुझु बि नाहे रखियो। मुतदा बाब चयो त शहर में बरसाती नालनि जी सफ़ाई वारो कमु जारी आहे, रस्तनि जी सूरत हाल बि बहितर थी आहे।

सिंध में साल 2026 जे पहिरें छह महीननि दौरान ॿारनि में HIV जा 739 नवां केसिस आहे। जनवरी खां जून ताईं मुल्क में HIV जा 805 केसिस रजिस्टर थिया, अक्सरियत सिंध जी शामिल। सिहत खाते मूजिबि जनवरी में 125, फेबररी में 117, मार्च में 87, अप्रैल में 121, मई में 108 ऐं जून में 171 ॿारनि में HIV ज़ाहिर थी।

0: ரணசதட்டோப்புத்து.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: यार ही गोडन जो सूर ऐ चेल जो सूर त मुझे जान ही करी छरिया है हलण वेहण हर कम दुखियो लगे थो
2: त पोइसा अन्या तई फकीरी एनएल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थई
1: न यार छा वाकई फायदो करे थी
2: बिल्कुल अदा कुदरती जुजन सा तैयार कैल फकीरी एनएल जैसे क्रीम मुतासिर हंदते जल्दी जजब थी सूर सोडिय जिस्म जी नसन जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी चेल जो सूर हुजे गोडन जो सूर कंध ऐं कुलन जी तकलीफ या वर्जिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
1: इस्तेमाल किए कजे
2: रुगो मुतासिर हंदते डीएम में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए ऐं आराम जो एहसास वच ऐं बुध जेकरे उमरे या हजते वनण जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सां गॾु खणी वंजा
1: वाह पोए अॼु ई वठींदस
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
4: GFM 88
3: नेटवर्क
0: सिंध की आवाज़।

0: मुझे माणू अटे मुझे इंतजार में हथ मेरी आस बैत मार जी हो जाए मारो खटिया कर आपने सर संसार के दिख इंसान
1: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Analgesic Cream. Dard, Sojan, Viram, Fauri Khatam. Aaj hi Karibi Store se naam lekar talab karein.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.

0: अमरीका पारां हमला बंद करण बाद ईरान बि अमरीका ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं रोके छॾियूं। ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमरीका ॿिनि राकेनि खां हमला नाहिनि कया, जंहिं बाद ईरान बि जवाबी हमला रोके छॾिया आहिनि। अमरीका थकिजी पियो आहे, अमरीका वटि का बि वाज़े हिकमत अमली नाहे। दिफ़ाई हमलनि में अमरीका जो घणो नुक़सान थियो आहे, 200 खां वधीक अमरीकी फ़ौजी मारिजी विया आहिनि। अमरीका ॿीहर हमला शुरू कया त जंग वधीक पखिड़िजी वेंदी। अमरीका खे इसराइली पॉलिसियुनि खां मुतासिर थी फ़ैसला न करणु घुर्जनि। में माहौलियाती ख़िदमतनि ऐं नुक़साननि जी फीस वसूल करण जा ज़ाब्ता तय करे छॾिया। ईरान जे माहौलियाती वारे इदारे चयो आहे त 50,000 खां वधीक बहरी जहाज ऐं तेल बरतार बेड़ा आपना हुर्मुस मां गुज़रनि था, जंहिं सबबि समुंड में माहौलियाती गदलाण पैदा थिए थी। गदलाण सबबि थींदड़ नुक़साननि जो अज़ारो थियणु घुर्जे। तयारु कयल ज़ाब्ता आलमी कन्वेंशन जी शिक मूजिबि आहिनि। आपना हुर्मुस मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खां वज़न ऐं सफ़र मूजिबि फीस उघाड़ी वेंदी। अवाम खे मिलंदड़ हर बस, हर अस्पताल, हर रोड ऐं हर एयरपोर्ट जी आजियां कयां थो, पर अवाम जे टैक्स मां वरितल शयूं अवाम लाइ तोहफ़ो नाहिनि हूंदियूं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त कुझु माण्हू आज़ाद कश्मीर में अवाम खे तोहफ़ा ॾियण जा दावा करे रहिया आहिनि, जेके ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि उहे अवाम लाइ तोहफ़ो नाहिनि, अवाम जो हक़ आहिनि। सिंध में बि अवाम खे मुफ़्त इलाज जूं सहूलियतूं मिलियल आहिनि, जेके तोहफ़ो नाहिनि। आज़ाद कश्मीर जो अवाम पंहिंजे हक़ लाइ वोट ॾिए। बलूचिस्तान में हिंदुस्तानी फितने खिलाफ़ ऑपरेशन अल अज़म जारी। वधीक टे दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधी 16 थी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल अज़म तहत सिक्योरिटी फोर्सिस जूं कार्रवाइयूं जारी आहिनि। ऑपरेशन अल अज़म तहत जारी ऑपरेशन में हिन वक़्त ताईं भारतीय फितने जा 16 दहशतगर्द मारिजी चुका आहिनि। ऑपरेशन दौरान बुली कुंड, अमराणी, कड कोचा ऐं मस्तोंग में भारतीय हामी दहशतगर्दनि खे वॾो नुक़सान पहुतो आहे। दहशतगर्दनि जे मुख़्तलिफ़ ताक़तनि खे तबाह करे बारूदी मवाद ऐं हथियार हथु कया विया आहिनि। बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं फोर्सिस जूं कार्रवाइयूं जारी रहंदियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुंहिंजी जान ई करी छॾी आहे। हलण वेहण हर कम ॾुखियो लॻे थो।
3: त पोइ छा अञा ताईं फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमाल न कई अथई?
2: न यार, छा वाकई फ़ाइदो करे थी?
3: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़नि सां तयार कयल फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंध ते जल्दी जज़्ब थी सूर, सोडियम, जिस्म जी नसुनि जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर, कंध ऐं कुलनि जी तकलीफ़ या वर्जिश का पोए छिक, हर हालत में बेहतरीन साथी। फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: रुगो मुतासिर हंध ते ॾींहं में 3-4 भेरा नरमी सां लॻाए ऐं आराम जो अहसास वठ ऐं ॿुध। जेकॾहिं उमिरि या हज ते वञण जो इरादो अथई त फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम ज़रूर पाण सां गॾु खणी वञा।
2: वाह, पोए अॼु ई वठी ईंदसि।
3: फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो।
4: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज़
5: GFM 90.8।

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अकेरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन खेडियो एक नौ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो डी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वती का आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए। वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं
3: DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडो सुठो
2: जीए FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
0: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: कुमारी मुझे तक जी न्याणी हुजे मुझे एन ए जी तो या तो उन्हें क्या बाजियाब कराया या तो आऊं पंजे एम एन ए ता इस्तीफा दे वन्या पर आऊं उन्हें ला आवाज बुलंद करिया ही फर्ज उते जैम तक जी आए उन्हें जे एम एन ए रो फर्ज है उन्हें जे एम पी ए रो फर्ज है उन्हें जे सेनेटर रो फर्ज है तो उन्हें न्याणी के बाजियाब कराए उते पहुंचाई
5: जमीलु जमा साहब हमारे बड़े हैं उनके लिए बड़ा एहतराम है अल्लाह करे कि उनके डिस्ट्रिक्ट उनके इलाके की सारी बहन बेटियां हिफ्ज़ व अमान में रहें कभी कोई ऐसी वहां पे कोई सूरत हाल ना हो जदोजहद हुई है बहुत इंक्वायरी हुई है और हम अब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको अल्लाह करे वो अपने वालदैन से मिले और आप मजीद कोई बात तो आप उनके जो वालदेन हैं आप उनसे बात कर सकते हैं कि वो मुतमिन हैं या नहीं है।
6: प्रिया कुमारी के मामले ते नासिर शाह जो मखदूम जमील ज़मान के जवाब कराची में मीडिया से गालाइंदे नासिर शाह चो तो दुआ है तो मखदूम जमील ज़मान साहब के इलाके जो समूरी नेणी महफूज होजन कदें भी प्रिया कुमारी जड़ी सूरत हाल पैदा न थे प्रिया कुमारी की बाजियाबी लाए घणी कोशिशों वरती वही अना भी वरती पी वन पूरी कोशिश है तो प्रिया कुमारी वारसन के मिले असा प्रिया कुमारी के वारसन से राबते में आयूँ बड़ी अग मुलाकात भी कई हुई प्रिया कुमारी के वालदीन से पुछा कर सको था तो उवे मुतमैन आहिन या न मखदूम जमील टाइम के डिनल इंटरव्यू में दीदे चो तो प्रिया कुमारी मुझे तक में अगुआ थे हाँ तो बाजियाब कराया हाँ एम एन ए तौर इस्तीफा दिया प्रिया कुमारी की बाजियाबी लाए इलाके के एम एन ए एम पी एस ए सेनेटर्स के किरदार अदा करें घुर्जन।

0: कन्या कुमारी के आजाद कयो महरम जे डी ते उहा सभी लपी विराए उन खे किडनैप करे रश में हणी वियो। उन जे माउ पीउ रोइन था, के 5 साल थी विया आहिनि उन वाक्य खे। उन पीउ माउ हाणे परेशान आहिनि, रोअनि था। तव्हां उन्हनि खे पंहिंजी बचड़ी वापसि कयो, प्रिया कुमारी खे आज़ाद कयो।
1: नंढड़ा मासूम ॿार उहे बि आज़ाद कयो, जेकी पुलिस सिंध जी पुलिस औरंगज़ेब खे ॾंढा थी हणे, उहो बि गला था, उहो बि न हाणे।
2: के चवनि पिया त असांखे ख़बर आहे त धाड़ेल खणी विया, के चवनि पिया धाड़ेल मरी वियो, के चवनि पिया फलाणे MNA वटिनि, के चवनि था डीरे MNA वटिनि, MPA वटिनि। असांजी नियाणियुनि खे बि आज़ादु कयो, हुन बचनि खे बि आज़ादु कयो।
3: बिलावल खे आज़ादु त उहो प्रिया कुमारी खे आज़ादु कराए, ॿारनि खे बि आज़ादु कराए।
0: असां प्रिया कुमारी खे आज़ादु थियणु चाहियूं था, हुनखे आज़ादु कयो।
4: प्रिया कुमारी ऐं ॿियनि ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज जारी। मुज़ाहिरनि में ॿारनि जी बि शिरकत। लाड़कण जे मुराद वाहण महल में हिकु औरत जी अॻुवाणी में ॿारनि जो एहतजाज। मुंहिंजी ॿारनि जी बाज़ियाबी जो मुतालबो। औरत चयो त कंहिं बि तनज़ीम सां तालुक़ु न आहे, पाड़े जे ॿारनि खे गॾु करे प्रिया कुमारी लाइ एहतजाज पई कयां। प्रिया लाइ कॾहिं चवनि था त धाड़ेल खणी विया, त कॾहिं चवनि था त फलाणे MNA ऐं फलाणे MPA वटि आहे। खैरपुर नाथन शाह में बि PTLF जे सॾु ते प्रिया कुमारी ऐं ॿियनि मुगी ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज। नारेबाज़ी टंडो आदम में क़ौमी अवामी तहरीक ऐं ॿियनि सियासी समाजी तनज़ीमुनि जो मुगी ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज।

कोटड़ी बैराज वट पानी के वहकर में वाद का डाउन स्ट्रीम में छोड़ शुरू। 11 महीन का 3,105 क्यूसेक पानी डाउन स्ट्रीम में छोड़ के वो मुहाड़न में खुशी की लहर बेड़ी लाहे रोजगार शुरू कर छो। कोटड़ी बैराज अप स्ट्रीम में 44,660 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड, 41,495 क्यूसेक पानी वाहन ए इजाफी पानी डाउन स्ट्रीम में छोड़ के पे वे।

गुडू बैराज ते नंढी बोड डिक्लेयर पाणी वहकरा 2,50,584 क्यूसिक ताईं पहुची विया। कादरपुर बचा बंद के पाणी पाइण लॻो। ॻोठाणनि में खौफ़। सखर बैराज वटि पाणी वहकरा वधी 1,32,290 क्यूसिक थी विया। कोटड़ी बैराज वटि 44,660 क्यूसिक पाणी रिकॉर्ड। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति, छाछड़ो, डाहली ऐं नंगर पार्कर समेत थर जे ॿियनि इलाइक़नि में बरसाति। केतिरा ई कचा घर ड्रही पट। कंबर शदादकोट, मीरो खान, सजावल जूणे जो में बि वसकारो। पी डी एम मूजिबि अॼु सखर, घोटकी, कश्मोर, चेखाबाद, कंबर शदादकोट ऐं खैरपुर में तेज़ बरसाति जा इम्कान आहिनि। नवाबशाह, उमरकोट, मीरपुर ख़ास ऐं टंडो मोहम्मद खान में बि बरसाति जा इम्कान। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर ख़ास, बदीन, सांगर, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, हैदराबाद, मटियारी ऐं शहीद बेनज़ीराबाद में शहरी बोर्ड जो ख़र्चु थियो।

कराची, हैदराबाद ऐं सखर में हज़ारें अफ़गाननि खे सुञाणप कार्ड जारी थियण जो निक्षाप। ज़रियनि मूजिबि कराची, हैदराबाद ऐं सखर रीजन में तरसियल अफ़गाननि खे 11,500 सुञाणप कार्ड जारी कया विया। अफ़गान शहरनि खे सुञाणप कार्ड जारी करण में नादरा जे अॻवाननि ऐं हाणोकनि अमलदारनि जे मुलस हुजण जा सबूत मिली विया। नादरा अमलदारनि ख़िलाफ़ सबूत मिलण बाद वॾे पैमाने ते कार्रवाई जो फ़ैसिलो। ज़रियनि मूजिबि जाली दस्तावेज़नि, कूड़ी रहाइश ऐं जाली ख़ानदानी डेटा सां सुञाणप कार्ड ठहिराईंदड़ नेटवर्क जा कुझु जवाबदार गिरफ़्तार कया विया आहिनि। गिरफ़्तार जवाबदारनि खां पुछा गुछा जारी। क़ौमी सुञाणप वारे निज़ाम में जालीसाज़ी कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्तु कार्रवाई जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। बलोचिस्तान में ऑपरेशन अल अज़म तहत दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी। मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंगु 16 थी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि जो चवणु आहे त कडकोचा, मस्तूंग ऐं ॿियनि इलाइक़नि में सिक्योरिटी फोर्सिस जी कार्रवायुनि दौरान फितनतुल हिंदुस्तान जा घणो नुक़सानु पहुतो आहे। फोर्सिस जी ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जा केतिरा ई ठिकाणा तबाह कया विया। वॾे अंग में हथियार ऐं धमाकेदार मादो हथ। सिक्योरिटी फोर्सिस पारां बलोचिस्तान में दहशतगर्दीअ ख़ात्मे ताईं कार्रवायूं जारी रखण जे अज़म जो इज़हारु।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
2: ये मासर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
2: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
2: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
2: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
2: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 8 PM. This time check is brought to you by
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सोजन, विरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें। सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।
3: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
4: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संग दे माया गुलाब खान बेण। सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा, सिंध सरकार पारां 5 लख टन परदेही कणक खरीद करण जो फैसलो, पाणी समेत चईनि मामलनि ते टास्क फोर्स कायम। थर में वसकारो, मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि में 3 ॼणा फोत, कारूंजर मां नयूं वही आयूं, मरीअ जहिड़ो मंज़र। सिंध हुकूमत पारां 14 सरकारी तर्जुमाननि खे कानूनी हैसियत ॾियारण जे लाइ कानून साज़ीअ जो फ़ैसिलो। सिंध में DOs खां पोइ 500 TOs जूं पोस्टूं ख़तमु, 1,41,000 अमलो स्कूलनि हवाले। सिंध में आवाम खे न रिलीफ मिली रहियो आहे न इंसाफ़, सैयद सदर दिनशा राष्ट्री। स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुधी सकंदा, अटे जो बहरान आई इंतजामी ना अहली। सिंध काबीना पारां सरकारी मुलाज़मनि जे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जे मुदे में वधीक 6 महीननि जी वाधि, सिंध जे पाणी मामलनि, मौसमियाती तब्दीली ऐं मसनूई ज़हानत AI बाबति 4 टास्क फोर्स क़ाइमु करणु ऐं 5 लख टन परॾेही कणिक ख़रीदारीअ जो फ़ैसिलो, कुनरी मिर्च मंडीअ लाइ 22 एकड़ ज़मीन मुख़्तस करणु, FWO ज़रिए मलीर जे इलाइक़े डमलोटी खां DHA ताईं वाटर लाइन मनसूबो मुकमल करणु, मनसूबे जी लागत में वाधि ऐं 400 एकड़नि ते जदीद ट्रक स्टैंड क़ाइमु करण जी मंज़ूरी। उन ॾिसण में सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे सदारत हेठि सिंध काबीना जो अहम इजलास थियो, जंहिं में 22 एजेंडाउनि ते ग़ौर करण बाद मंज़ूरी ॾिनी वई। इजलास में काबीना सूबे में कणिक ज़खीरनि जी सूरत हाल, अटे जी क़ीमतुनि ऐं खुराक खाते जी कणिक ख़रीदारीअ वारी तजवीज़ जो जाइज़ो वरितो। काबीना खे ॿुधायो वियो त सिंध में 2025-2026 दौरान 4.7 मिलियन टन कणिक पैदा थी, जेका गुज़िरियल सालनि जे बचियल ज़खीरनि समेत 4.84 मिलियन टन थिए थी, जॾहिं त सिंध जी सालियानी घुर्ज 6.53 मिलियन टन आहे, जेका 1.69 मिलियन टन जी घटाई खे ज़ाहिर करे थी। मौजूदा वाइपे जो सिलसिलो जारी रहियो त 2027 ताईं सूबे खे लॻभॻि 2.11 मिलियन टन कणिक जी खोट जो मुंहुं ॾिसणो पइजी सघे थो। हिन खुराक खाते खे हिदायत कई त ज़खीरा कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं तेज़ करे कणिक जे लिकायल ज़खीरा हथु कया वञनि। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ऐं लाॻापियल खातनि जे वज़ीरनि ते मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी ठाहिण जो फ़ैसिलो कयो वियो, जेका हर हिकु टास्क फोर्स जी जोड़जक खे हथ में शिकिल ॾींदी। काबीना मीरपुर ख़ास जे वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन क़ाइमु करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी। होॾां सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण काबीना जे फ़ैसिलनि बाबति प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त सरकारी मुलाज़मनि जे सिहत इंश्योरेंस प्रोग्राम में बि वधीक 6 महीननि जी वाधि कई वई आहे, जॾहिं त पाणी मामलनि, मौसमियाती तब्दीली ऐं मसनूई ज़हानत AI सां लाॻापियल मामलनि ते ख़ुसूसी टास्क फोर्स जोड़ियो वेंदो। हुन वधीक चयो त कराची में 400 एकड़नि ते जदीद ट्रक स्टैंड क़ाइमु कबो। थर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में वसकारे जो काल्ह बि वक़फ़े वक़फ़े सां जारी रहियो। मुख़्तलिफ़ हादसनि ऐं वाकियनि में 3 ॼणा फोत, नंगर पार्कर ऐं भर पासे में गजकोट सां तेज़ बरसाति जो 24 कलाक जारी रहियो। कारूंजर जबल मां नयूं वही आहियूं, बरसाति बाद कारूंजर जबल मां गोड़ दोहड़ो ऐं राणा सर घटियारी ऐं पोरण वाह ऐं ॿियूं नयूं वही आहियूं। मौसम ख़ुशगवार थी वई, जॾहिं त नंगर पार्कर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 2 ॾींहनि खां वक़फ़े वक़फ़े सां किथे हल्की त किथे तेज़ बरसाति जारी रही। ॿिए तरफ़ ॻोठु वाधड़ाईअ भरिसां बरसाती नदीअ जे वहिकिरे मां पंज तरनि वारनि जी लक्ष्मण कूलीअ जो लाश हथायो। वारसनि मूजिबि लक्ष्मण गुज़िरियल राति घरां बरसाती नदीअ जे वहिकिरो ॾिसण जे लाइ निकितो हुयो। सुबुह जो संदसि लाश नदीअ मां मिलियो। बरसाति खां पोइ थर जे मारू माण्हुनि जूं रौनकूं मोटी आयूं ऐं फितरी मंज़र ॾिसण जे लाइ सियाह पहुची विया। जॾहिं त नगर पार्कर खां चोड़ियो रोड टुटण सबबि सियाह वॾे अंग में फाथल आहिनि। कुजरीअ भरिसां ॻोठु वली मोहम्मद आरे में बरसाति दौरान खिवण किरी पई। खिवण किरण सबबि घर जे अङण में रांदि कंदड़ चइनि सालनि जो ॿारु विनोद पुटु चमन कूली फोती वियो। जॾहिं त वाकिए में सतनि वरनि जो दिलीप पुटु चमन कूली ज़ख़्मी थी पियो। फोतीअ जो मड़ ऐं ज़ख़्मी खे तालके अस्पताल नियो वियो। डॉक्टरनि पारां हिकु ॿार जे फोत थियण जी तस्दीक कई वई। वाके बाद फोती ॿार जे घर में घुराम अची वियो। ढोरो नारो ऐं भर पासे वारनि इलाइक़नि में बरसाति जो पहिरियों इस्कारो शाम खां पोइ राति जे वक़्त ताईं जारी रहियो, जंहिं सबबि मौसम ज़बरदस्त थी वई। तालीम खाते पारां इंतिज़ामी सुधारनि जे लाइ क्लस्टर पॉलिसी ते अमल दरामद ऐं गैर ज़रूरी इंतिज़ामी उहिदा ख़तमु करण जी मंज़ूरी। TEOs जूं 550 पोस्टूं पोल में मुंतकिल करण ऐं TEOs आफ़िस में मौजूदु 141,000 तदरीसी ऐं गैर तदरीसी अमले खे स्कूल क्लस्टर पॉलिसी तहत क्लस्टर हब स्कूलनि में मुंतकिल करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ज़िले ऐं डिवीज़नल सतह ते नए सिरे इंतिज़ामी जोड़ जक वारी तजवीज़ बि मंज़ूरु कई वई। काल्ह तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह जे सदारत हेठि थियल इजलास में माली साल 2025-2026 में सूबे जे 34,106 स्कूलनि जे लाइ जारी थियल स्कूल स्पेसिफिक बजट जे इस्तेमाल जो जाइज़ो वरितो वियो। इजलास खे ॿुधायो वियो त 18,60,00,00,000 रक़म मुख़्तस थी, जंहिं मां रुॻो 34% रक़म इस्तेमालु थी सघी। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त स्कूल एजुकेशन नाणे खाते ऐं ट्रेज़री विच में राब्ता वधाया वञनि, जीअं स्कूल स्पेसिफिक बजट जे इस्तेमाल में आसानियूं पैदा थी सघनि। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त ॼाणायल बजट जे इस्तेमाल जे सिलसिले में SOP सां बिल जमा कराइण लाइ हिकु चेक लिस्ट जारी कई वेंदी। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त नाणो खातो ऐं ट्रेज़री स्कूल स्पेसिफिक बजट तहत जमा थींदड़ बिल हिकु हफ़्ते अंदरि मंज़ूरु कंदा। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त स्कूल क्लस्टर पॉलिसी तहत TEO आफ़िसुनि में 141,000 खां वधीक तदरीसी ऐं गैर तदरीसी जायुनि खे बि मरहलेवार क्लस्टर हब स्कूलनि में मुंतकिल कयो वेंदो, जॾहिं त तालीमी एजुकेशन आफ़िसरनि जूं 550 जायूं बि पोल में मुंतकिल करण सां गॾु ज़िले ऐं डिवीज़नल सतह ते इंतिज़ामी ढांचे जे नए सिर जो झड़क वारी तजवीज़ खे बि मंज़ूरु कयो वियो। हाणे तालुके में रुॻो हिकु TEO रहंदो, जंहिंखे पिणु स्कूल पोल मां पघार मिलंदी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध जे सदर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिद जी चयो आहे त जेकॾहिं सिंध खे सिंधु दरिया मां आइनी ऐं कानूनी हिसे जो पाणी न ॾिनो वियो त सूबे जूं ज़रखेज़ ज़मीनूं बंजर बणिजी वेंदियूं, सिंध ॾुकार जो शिकार बणिजी वेंदी ऐं उन जा संगीन असर ईंदड़ नसुलनि खे भुगणा पवंदा। हुन चयो त वफ़ाक ऐं सिंध जा हुकमरान हिक ई सिके जा ॿ पासा आहिनि, पर अफ़सोस जी ॻाल्हि उहा आहे त सिंध हुकूमत सिंध जे मुफ़ादनि जे तहफ़ुज़ करण बदिरां उन्हनि खे नुक़सान पहुचायो आहे। हुन सिंध जे हुकमराननि पारां राति जे ऊंदाहीअ में बबरलो में प्रिया कुमारी समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां गुम थियल निंगरियुनि जी बाज़ियाबी जे लाइ क़ाइमु एहतजाजी कैंप ते पुलिस चढ़ाई। सख़्तु लठबाज़ी औरतुनि वकीलनि ऐं ॿियनि पुरवन एहतजाज कंदड़नि खे गेले गिरफ़्तार करण वारे अमल जी सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत कंदे चयो त अहिड़ो अमल जमहूरियत इंसानी हक़नि ऐं इज़हार जे आज़ादीअ ते हमिलो आहे। हुन मुतालबो कयो त गिरफ़्तार कयल समूरनि माण्हुनि खे फौरी तौरु आज़ादु कयो वञे, गुम थियल निंगरियुनि जी बाज़ियाबी खे यकीनी बणायो वञे ऐं ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ क़ानून मूजिबि कार्रवाई कई वञे। हुननि ख़्यालनि जो इज़ार हुन पंहिंजे रिहाइश गाह ते सिंध जे मशहूरु सियासी समाजी शख़्सियतुनि नामियारे कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड आफ़ताब गेरा, कामरान गेरा ऐं सैयद वली शाह सां मुलाक़ात दौरान कयो। उन मौक़े ते मज़कूर शख़्सियतुनि पंहिंजे साथियुनि समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल में शमूलियत जो ऐलान कयो। सिंधु हुकूमत पारां 14 सरकारी तर्जुमाननि खे क़ानूनी हैसियत ॾियण जे लाइ क़ानून साज़ी करण जो फ़ैसिलो। तर्जुमाननि जे मुक़ररी अख़्तियारनि फ़र्ज़नि पघारुनि अलाउंस ऐं ॿियनि वरातुनि बाबति बिल आणण ते ग़ौर वीचार शुरू कयो वियो आहे। ज़रियनि मूजिबि तजवीज़ कयल नए क़ानून में सरकारी तर्जुमाननि जी मुक़ररी अख़्तियारनि ज़िमेवारियुनि ऐं वरातुनि बाबति क़ानूनी ढांचो मुतारिफ़ करायो वेंदो। ज़रियनि मूजिबि क़ानून जो मक़सदु तर्जुमाननि जे किरदार खे क़ानूनी हैसियत ॾियणो आहे। ज़रियनि मूजिबि त सरकारी तर्जुमाननि जी पघार अलाउंस ऐं मरातुनि खे वॾे वज़ीर जे ख़ासि मामलनि जे पघारुनि सां गॾाइण जी तजवीज़ ते गौर कयो पियो वञे। वाज़े रहे त सिंध हुकूमत जे रूल्स ऑफ बिज़नेस में सरकारी तर्जुमाननि लाइ का बि बाज़ाबता गुंजाइश मौजूदु नाहे। सिंध जे वॾे वज़ीर पंहिंजा इंतज़ामी अख़्तियार इस्तेमालु कंदे सरकारी तर्जुमान मुक़ररु कया हुआ। उन 10वीं जुलाई 2024 में 6 ऐं जनवरी 2025 में वधीक 8 तर्जुमान मुक़ररु कया विया। उन्हनि तर्जुमाननि मां 4 सिंध असेंबलीअ जा मेंबर, 2 मेयर कराची सखर ऐं बाकी 8 अणचूंडियल आहिनि। ज़रिए जो चवणु आहे त तजवीज़ कयल बिल गौर वीचार जे लाइ जल्द सिंध काबीना आॾो पेश करण जो इम्कानु आहे। सिंध जे सरकारी कॉलेजनि में फर्स्ट ईयर में दाख़िलाउनि जो ऐलान कयो वियो आहे। उन हवाले सां कॉलेजिस खाते पारां सरकारी कॉलेजनि में शागिर्दनि जे दाख़िला जे लाइ लिस्ट जारी कई वई आहे। खाते जे डायरेक्टर जनरल चयो आहे त सिंध में दाख़िला जे लाइ 1,60,000 खां वधीक दरख़्वास्तूं मिलियूं। रुगो कराची में 98,646 दरख़्वास्तूं जमा करायूं वयूं। खाते मूजिबि शागिर्द 31 जुलाई ताईं पंहिंजी दाख़िला कन्फर्म कराइनि त जीअं दाख़िला जो मरहलो मुकमल थी सघे। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल सिंध काबीना जे इजलास में सूबे में कणक जे ज़खीरनि, अटे जी क़ीमतुनि ऐं ख़ुराक खाते जे कारकरदगी जो जाइज़ो वरितो वियो। इजलास खे ॿुधायो वियो त सिंध में 2025-2026 दौरान 4.7 मिलियन टन कणक पैदा थी, जॾहिं त सालियानी घुर्ज 6.53 मिलियन टन आहे, जंहिं सबबि ईंदड़ साल ताईं कणक जी खोट जो ख़दशो ज़ाहिरु कयो वियो। काबीना खे आगाह कयो वियो त ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई दौरान वॾे मक़दार में कणक ज़ब्त कई वई आहे, जॾहिं त पास्को पिणु पंहिंजे ज़खीरनि मां कणक विकिरण जी आछ कई आहे। वॾे वज़ीर हिदायत कई त जेकॾहिं ज़रूरत पवे त वफ़ाक़ खां 5 लख टन कणक ख़रीद कई वेंदी ऐं ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं वधीक तेज़ कयूं वेंदियूं। ॿिए तरफ़ सूबे में अटे जूं क़ीमतूं मुसलसल वधी रहियूं आहिनि, जिते 10 किलो अटे जे थेले जी क़ीमत 1,600 रुपियनि खां बि मथे पहुची वई आहे। अवामी हल्कनि जो चवणु आहे त बुरान जो बुनियादी सबबु ख़ुराक खाते जी नाक़स मनसूबाबंदी, ख़रीदारीअ में नाअहली ऐं मुबैना करप्शन आहे, जंहिं सबबु आबादगारनि खे नुक़सान ऐं आम माण्हुनि खे महांगे अटे जी सूरत में तकलीफ़ खे मुंहुं ॾियणो पइजी रहियो आहे। अवाम मुतालबो कयो आहे त हुकूमत शफ़ाफ़ पॉलिसी अख़्तियार करे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ सख़्तु कार्रवाई करे ऐं अटे जी फराहमीअ खे यकीनी बणाए।

0: ਰੇਡੀਓ ਹਿਨ ਵਕਤ ਜੋ ਸਿੰਧ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਬੇ ਆਚਰ ਜੇ ਸਿੰਧ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਤਈ ਗੁਲਾਬ ਖਾਨ ਭੇਣ ਕਰਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।
1: जो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8 जियो सिंधी जियो सिंधी। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: सुबह

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: मेरा
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 9 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Sakran ke ho, to aawaz bhi sakran ki hai.
2: Sunte raho GFM 90.8.
4: Sindh se judi hafte bhar ki khabrein. तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याला, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
5: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संग दे माया गुलाब खान बेण। सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा। सिंध सरकार पारां 5 लख टन परदेही कणक खरीद करण जो फैसलो। पाणी समेत चईन मामलनि ते टास्क फोर्स कायम। थर में वसकारो, मुख़्तलिफ़ वाकियनि में 3 ॼणा फोत। कारूंजर मां नयूं वही आहियूं, मरीअ जहिड़ो मंज़र। सिंध हुकूमत पारां 14 सरकारी तर्जुमाननि खे कानूनी हैसियत ॾियारण जे लाइ कानून साज़ीअ जो फ़ैसिलो। सिंध में डीओज़ खां पोइ 500 टीओज़ जूं पोस्टूं ख़तमु। 1,41,000 अमलो स्कूलनि हवाले। सिंध में अवाम खे न रिलीफ मिली रहियो आहे न इंसाफ़। सैयद सदर दिनशाह राष्ट्री। स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुधी सकंदा, अटे जो बहरान ऐं इंतज़ामी नाअहली। सिंध काबीना पारां सरकारी मुलाज़मनि जे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जे मुदे में वधीक 6 महीननि जी वाधि। सिंध जे पाणी मामलनि, मौसमियाती तब्दीली ऐं मसनूई ज़हानत AI बाबति 4 टास्क फोर्स क़ाइमु करणु ऐं 5 लख टन परॾेही कणक ख़रीदारीअ जो फ़ैसिलो। कुनरी मिर्च मंडीअ लाइ 22 एकड़ ज़मीन मुख़्तस करणु। FWO ज़रिए मलीर जे इलाइक़े डमलोटी खां DHA ताईं वाटर लाइन मनसूबो मुकमल करणु। मनसूबे जी लागत में वाध ऐं 400 एकड़नि ते जदीद ट्रक स्टैंड क़ाइमु करण जी मंज़ूरी। उन ॾिसण में सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे सदारत हेठि सिंध काबीना जो अहम इजलास थियो, जंहिं में 22 एजेंडाउनि ते ग़ौर करण बाद मंज़ूरी ॾिनी वई। इजलास में काबीना सूबे में कणक ज़खीरनि जी सूरत हाल, अटे जी क़ीमतुनि ऐं खुराक खाते जी कणक ख़रीदारीअ वारी तजवीज़ जो जाइज़ो वरितो। काबीना खे ॿुधायो वियो त सिंध में 2025-2026 दौरान 4.7 मिलियन टन कणक पैदा थी, जेका गुज़िरियल सालनि जे बचियल ज़खीरनि समेत 4.84 मिलियन टन थिए थी। जॾहिं त सिंध जी सालियानी घुर्ज 6.53 मिलियन टन आहे, जेका 1.69 मिलियन टन जी घटाई खे ज़ाहिर करे थी। मौजूदा वाइपे जो सिलसिलो जारी रहियो त 2027 ताईं सूबे खे लॻभॻि 2.11 मिलियन टन कणक जी खोट जो मुंहुं ॾिसणो पइजी सघे थो। हिन खुराक खाते खे हिदायत कई त ज़खीरा कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं तेज़ करे कणक जी लिकायल ज़खीरा हथ कया वञनि। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ऐं लाॻापियल खातनि जे वज़ीरनि ते मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी ठाहिण जो फ़ैसिलो कयो वियो, जेका हर हिकु टास्क फोर्स जी जोड़जक खे हथ में शिकिल ॾींदी। काबीना मीरपुर ख़ास जे वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन क़ाइमु करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी। होॾां सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण काबीना जे फ़ैसिलनि बाबति प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त सरकारी मुलाज़मनि जे सिहत इंश्योरेंस प्रोग्राम में बि वधीक 6 महीननि जी वाधि कई वई आहे, जॾहिं त पाणी मामलनि, मौसमियाती तब्दीली ऐं मसनूई ज़हानत AI सां लाॻापियल मामलनि ते ख़ुसूसी टास्क फोर्स जोड़ियो वेंदो। हुन वधीक चयो त कराची में 400 एकड़नि ते जदीद ट्रक स्टैंड क़ाइमु कबो। थर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में वसकारे जो काल्ह बि वक़फ़े सां जारी रहियो। मुख़्तलिफ़ हादसनि ऐं वाकियनि में 3 ॼणा फोत। नंगर पार्कर ऐं भर पासे में गजकोट सां तेज़ बरसाति जो 24 कलाक जारी रहियो। कारूंजर जबल मां नयूं वही आहियूं। बरसाति बाद कारूंजर जबल मां गोड़ दोड़ो ऐं राणा सर घरटियारी ऐं पोरण वाह ऐं ॿियूं नयूं वही आहियूं। मौसम ख़ुशगवार थी वई, जॾहिं त नंगर पार्कर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 2 ॾींहनि खां वक़फ़े सां किथे हल्की त किथे तेज़ बरसाति जारी रही। ॿिए तरफ़ ॻोठु वाधड़ाई भरिसां बरसाती नदी जे वहिकरे मां 45 वरनि जी लक्ष्मण कुलीअ जो लाश हथायो। वारसनि मूजिबि लक्ष्मण गुज़िरियल राति घरां बरसाती नदीअ जे वहिकरो ॾिसण जे लाइ निकितो हुयो। सुबुह जो संदसि लाश नदीअ मां मिलियो। बरसाति खां पोइ थर जे मारू माण्हुनि जूं रौनकूं मोटी आयूं ऐं फितरी मंज़र ॾिसण जे लाइ सियाह पहुची विया। जॾहिं त नगर पार्कर खां चोड़ियो रोड टुटण सबबि सियाह वॾे अंग में फाथल आहिनि। कुजरीअ भरिसां ॻोठु वली मोहम्मद आरे में बरसाति दौरान खिवण किरी पई। खिवण किरण सबबि घर जे अंगण में रांदि कंदड़ 4 सालनि जो ॿार विनोद पुटु चमन कुली फोती वियो। जॾहिं त वाक़िए में 7 वरनि जो दिलीप पुटु चमन कुली ज़ख़्मी थी पियो। फोतीअ जो मड़ ऐं ज़ख़्मी खे तालके अस्पताल नियो वियो। डॉक्टरनि पारां हिकु ॿार जे फोत थियण जी तस्दीक कई वई। वाक़िए बाद फोती ॿार जे घर में घुराम मची वियो। ढोरो नारो ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में बरसाति जो पहिरियों विस्कारो शाम खां पोइ राति जे वक़्त ताईं जारी रहियो, जंहिं सबबि मौसम ज़बरदस्त थी वई। तालीम खाते पारां इंतिज़ामी सुधारनि जे लाइ क्लस्टर पॉलिसी ते अमल दरामद ऐं गैर ज़रूरी इंतिज़ामी उहिदा ख़तमु करण जी मंज़ूरी। TEOs जूं 550 पोस्टूं पोल में मुंतकिल करण ऐं TEOs आफ़िस में मौजूदु 141,000 तदरीसी ऐं गैर तदरीसी अमले खे स्कूल क्लस्टर पॉलिसी तहत क्लस्टर हब स्कूलनि में मुंतकिल करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ज़िले ऐं डिवीज़नल सतह ते नए सिरे इंतिज़ामी जोड़ जक वारी तजवीज़ बि मंज़ूरु कई वई। काल्ह तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह जे सदारत हेठि थियल इजलास में माली साल 2025-2026 में सूबे जे 34,106 स्कूलनि जे लाइ जारी थियल स्कूल स्पेसिफिक बजट जे इस्तेमाल जो जाइज़ो वरितो वियो। इजलास खे ॿुधायो वियो त 18,60,00,00,000 रक़म मुख़्तस थी, जंहिं मां रुॻो 34% रक़म इस्तेमालु थी सघी। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त स्कूल एजुकेशन नाणे खाते ऐं ट्रेज़री विच में राब्ता वधाया वञनि, जीअं स्कूल स्पेसिफिक बजट जे इस्तेमाल में आसानियूं पैदा थी सघनि। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त ॼाणायल बजट जे इस्तेमाल जे सिलसिले में SOP सां बिल जमा कराइण लाइ हिकु चेक लिस्ट जारी कई वेंदी। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त नाणो खातो ऐं ट्रेज़री स्कूल स्पेसिफिक बजट तहत जमा थींदड़ बिल हिकु हफ़्ते अंदरि मंज़ूरु कंदा। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त स्कूल क्लस्टर पॉलिसी तहत TEO आफ़िसुनि में 141,000 खां वधीक तदरीसी ऐं गैर तदरीसी जायुनि खे बि मरहलेवार क्लस्टर हब स्कूलनि में मुंतकिल कयो वेंदो। जॾहिं त तालीमी एजुकेशन आफ़िसरनि जूं 550 जायूं बि पोल में मुंतकिल करण सां गॾु ज़िले ऐं डिवीज़नल सतह ते इंतिज़ामी ढांचे जे नए सिर जो झड़क वारी तजवीज़ खे बि मंज़ूरु कयो वियो। हाणे तालके में रुॻो हिकु TEO रहंदो, जंहिंखे पिणु स्कूल पोल मां पघार मिलंदी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध जे सदर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी चयो आहे त जेकॾहिं सिंध खे सिंधु दरिया मां आइनी ऐं कानूनी हिसे जो पाणी न ॾिनो वियो त सूबे जूं ज़रखेज़ ज़मीनूं बंजर बणिजी वेंदियूं, सिंध ॾुकार जो शिकार बणिजी वेंदी ऐं उन जा संगीन असर ईंदड़ नसुलनि खे भुगणा पवंदा। हुन चयो त वफ़ाक ऐं सिंध जा हुकमरान हिकु ई सिके जा बपासा आहिनि, पर अफ़सोस जी ॻाल्हि उहा आहे त सिंध हुकूमत सिंध जे मुफ़ादनि जे तहफ़ुज़ करण बदिरां उन्हनि खे नुक़सान पहुचायो आहे। हुन सिंध जे हुकमराननि पारां राति जे ऊंदाहि में बबरलो में प्रिया कुमारी समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां गुम थियल निंगरियुनि जी बाज़ियाबी जे लाइ क़ाइमु एहतजाजी कैंप ते पुलिस चढ़ाई। सख़्त लठबाज़ी औरतुनि वकीलनि ऐं ॿियनि पुरामन एहतजाज कंदड़नि खे गेले गिरफ़्तार करण वारे अमल जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कंदे चयो त अहिड़ो अमल जमहूरियत इंसानी हक़नि ऐं इज़हार जे आज़ादीअ ते हमिलो आहे। हुन मुतालबो कयो त गिरफ़्तार कयल समूरनि माण्हुनि खे फौरी तौरु आज़ादु कयो वञे, गुम थियल निंगरियुनि जी बाज़ियाबी खे यकीनी बणायो वञे ऐं ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ क़ानून मूजिबि कार्रवाई कई वञे। हुन ख़्यालनि जो इज़हार हुन पंहिंजे रिहाइश गाह ते सिंध जे मशहूरु सियासी समाजी शख़्सियतुनि नामियारे कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड आफ़ताब गेरा, कामरान गेरा ऐं सैयद वली शाह सां मुलाक़ात दौरान कयो। हुन मौक़े ते मज़कूर शख़्सियतुनि पंहिंजे साथियुनि समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल में शमूलियत जो ऐलान कयो। सिंधु हुकूमत पारां 14 सरकारी तर्जुमाननि खे क़ानूनी हैसियत ॾियण जे लाइ क़ानून साज़ी करण जो फ़ैसिलो। तर्जुमाननि जे मुक़ररी अख़्तियारनि फ़र्ज़नि पघारुनि अलाउंस ऐं ॿियनि वरातुनि बाबति बिल आणण ते ग़ौर वीचार शुरू कयो वियो आहे। ज़रियनि मूजिबि तजवीज़ कयल नए क़ानून में सरकारी तर्जुमाननि जी मुक़ररी अख़्तियारनि ज़िमेवारियुनि ऐं वरातुनि बाबति क़ानूनी ढांचो मुतारिफ़ करायो वेंदो। ज़रियनि मूजिबि क़ानून जो मक़सदु तर्जुमाननि जे किरदार खे क़ानूनी हैसियत ॾियणो आहे। ज़रियनि मूजिबि त सरकारी तर्जुमाननि जी जी पघार अलाउंस ऐं मरातुनि खे वॾे वज़ीर जे ख़ासि मामलनि जे पघारुनि सां गॾाइण जी तजवीज़ ते गौर कयो पियो वञे। वाज़े रहे त सिंध हुकूमत जे रूल्स ऑफ बिज़नेस में सरकारी तर्जुमाननि लाइ का बि बाज़ाबता गुंजाइश मौजूदु न आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर पंहिंजा इंतज़ामी अख़्तियार इस्तेमालु कंदे सरकारी तर्जुमान मुक़ररु कया हुआ। उन 10वीं जुलाई 2024 में 6 ऐं जनवरी 2025 में वधीक 8 तर्जुमान मुक़ररु कया विया। उन्हनि तर्जुमाननि मां 4 सिंध असेंबली जा मेंबर, 2 मेयर कराची सखर ऐं बाक़ी 8 अणचूंडियल आहिनि। ज़रे जो चवणु आहे त तजवीज़ कयल बिल गौर वीचार जे लाइ जल्द सिंध काबीना आॾो पेश करण जो इम्कान आहे। सिंध जे सरकारी कॉलेजनि में फर्स्ट ईयर में दाख़िलाउनि जो ऐलान कयो वियो आहे। उन हवाले सां कॉलेजिस खाते पारां सरकारी कॉलेजनि में शागिर्दनि जे दाख़िला जे लाइ लिस्ट जारी कई वई आहे। खाते जे डायरेक्टर जनरल चयो आहे त सिंध में दाख़िला जे लाइ 1,60,000 खां वधीक दरख़्वास्तूं मिलियूं। रुगो कराची में 98,646 दरख़्वास्तूं जमा करायूं वयूं। खाते मूजिबि शागिर्द 31 जुलाई ताईं पंहिंजी दाख़िला कन्फर्म कराइनि त जीअं दाख़िला जो मरहलो मुकमल थी सघे। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल सिंध काबीना जे इजलास में सूबे में कणिक जे ज़खीरनि, अटे जी क़ीमतुनि ऐं ख़ुराक खाते जे कारकर्दगी जो जाइज़ो वरितो वियो। इजलास खे ॿुधायो वियो त सिंध में 2025-2026 दौरान 4.7 मिलियन टन कणिक पैदा थी, जॾहिं त सालियानी घुर्ज 56.53 मिलियन टन आहे, जंहिं सबबि ईंदड़ साल ताईं कणिक जी खोट जो ख़दशो ज़ाहिर कयो वियो। काबीना खे आगाह कयो वियो त ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई दौरान वॾे मक़दार में कणिक ज़ब्त कई वई आहे, जॾहिं त पास्को पिण पंहिंजे ज़खीरनि मां कणिक विकिरण जी आछ कई आहे। वॾे वज़ीर हिदायत कई त जेकॾहिं ज़रूरत पए त वफ़ा खां 5 लख टन कणिक ख़रीद कई वेंदी ऐं ज़खीरो कुंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं वधीक तेज़ कयूं वेंदियूं। ॿिए तरफ़ सूबे में अटे जूं क़ीमतूं मुसलसल वधी रहियूं आहिनि, जिते 10 किलो अटे जे थेले जी क़ीमत 1,600 रुपियनि खां बि मथे पहुची वई आहे। अवामी हल्क़नि जो चवणु आहे त बुहरान जो बुनियादी सबबु ख़ुराक खाते जी नाक़स मनसूबाबंदी, ख़रीदारीअ में नाअहली ऐं मुबैना करप्शन आहे, जंहिं सबबु आबादगारनि खे नुक़सान ऐं आम माण्हुनि खे महांगे अटे जी सूरत में तकलीफ़ खे मुंहुं ॾियणो पइजी रहियो आहे। अवाम मुतालबो कयो आहे त हुकूमत शफ़ाफ़ पॉलिसी अख़्तियार करे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ सख़्तु कार्रवाई करे ऐं अटे जी फराहमीअ खे यकीनी बणाए।

0: ਜੋ ਹਿਨ ਵਕਤ ਜੋ ਸਿੰਧ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਬੇ ਆਚਰ ਜੇ ਸਿੰਧ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਤਈ ਗੁਲਾਬ ਖਾਨ ਭੇਣ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।
1: जो शहर बहजो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
2: GFM 90.8 जियो सिंधी जियो सिंधी
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
4: डाडो सुठो
3: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 10 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
2: Sakran ke ho, to aawaz bhi sakran ki hai.
1: Sunte raho GFM 90.8.
3: Sindh se judi hafte bhar ki khabrein, taqreebat ka haal, masail ki surat-e-haal. सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
4: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संग दे माया गुलाब खान बेण। सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा, सिंध सरकार पारां 5 लख टन परदेही कणक खरीद करण जो फैसलो, पाणी समेत चईन मामलनि ते टास्क फोर्स कायम। थर में वसकारो, मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि में 3 ॼणा फौत, कारूंजर मां नयूं वही आयूं, मरीअ जहिड़ो मंज़र। सिंध हुकूमत पारां 14 सरकारी तर्जुमाननि खे कानूनी हैसियत ॾियारण जे लाइ कानून साज़ीअ जो फ़ैसिलो। सिंध में डीओज़ खां पोइ 500 टीओज़ जूं पोस्टूं ख़तमु, 1,41,000 अमलो स्कूलनि हवाले। सिंध में आवाम खे न रिलीफ मिली रहियो आहे न इंसाफ़, सैयद सदर इंशाराश्ती। स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुधी सकंदा, अटे जो बहरान ऐं इंतज़ामी ना अहली। सिंध काबीना पारां सरकारी मुलाज़मनि जे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जे मुदे में वधीक 6 महीननि जी वाधि, सिंध जे पाणी मामलनि, मौसमियाती तब्दीली ऐं मसनूई ज़हानत AI बाबति 4 टास्क फोर्स क़ाइमु करणु ऐं 5 लख टन परॾेही कणक ख़रीदारीअ जो फ़ैसिलो। कुनरी मिर्च मंडीअ लाइ 22 एकड़ ज़मीन मुख़्तस करणु, FWO ज़रिए मलीर जे इलाइक़े डमलोटी खां DHA ताईं वाटर लाइन मनसूबो मुकमल करण, मनसूबे की लागत में वाद ऐं 400 एकड़ जदीद ट्रक स्टैंड कायम करण की मंजूरी। उन रसम में सिंध के वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह की सदारत हेठ सिंध काबीना जो अहम इजलास थियो, जैमें 22 एजेंडाउन से गौर करण बाद मंजूरी दिनी वही। इजलास में काबीना सूबे में कणक जखीरन की सूरत हाल, अटे की कीमतुन ऐं खुराक खाते की कणक खरीदारी वाली तजवीज़ जो जायजो वरतो। काबीना के बुधायो वियो तो सिंध में 2025-2026 दौरान 4.7 मिलियन टन कणक पैदा थी, जेका गुजरियल सालन के बचल जखीरन समेत 4.84 मिलियन टन थिए थी, जॾहिं त सिंध जी सालियानी घुर्ज 6.53 मिलियन टन आहे, जेका 1.79 मिलियन टन जी घटाई खे ज़ाहिर करे थी। मौजूदा वाइपे जो सिलसिलो जारी रहियो त मार्च 2027 ताईं सूबे खे लॻभॻि 2.11 मिलियन टन कणक जी खोट जो मुंहुं ॾिसणो पइजी सघे थो। हिन खुराक खाते खे हिदायत कई त ज़खीरा कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं तेज़ करे कणक जी लिकायल ज़खीरा हथ कया वञनि। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ऐं लाॻापियल खातनि जे वज़ीरनि ते मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी ठाहिण जो फ़ैसिलो कयो वियो, जेका हर हिकु टास्क फोर्स जी जोड़जक खे हथ में शिकिल ॾींदी। काबीना मीरपुर खास जे वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन क़ाइमु करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी। होॾां सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण काबीना जे फ़ैसिलनि बाबति प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त सरकारी मुलाज़मनि जे सिहत इंश्योरेंस प्रोग्राम में बि वधीक 6 महीननि जी वाद कई वई आहे, जॾहिं त पाणी मामलनि, मौसमियाती तब्दीली ऐं मसनूई ज़हानत AI सां लाॻापियल मामलनि ते ख़ुसूसी टास्क फोर्स जोड़ियो वेंदो। हुन वधीक चयो त कराची में 400 एकड़नि ते जदीद ट्रक स्टैंड क़ाइमु कबो। थर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में वसकारे जो काल्ह बि वक़फ़े वक़फ़े सां जारी रहियो। मुख़्तलिफ़ हादसनि ऐं वाकियनि में 3 ॼणा फौत, नंगर पार्कर ऐं भर पासे में गजगोड़ सां तेज़ बरसाति जो 24 कलाक जारी रहियो। कारूंजर जबल मां नयूं वही आहियूं, बरसाति बाद कारूंजर जबल मां गोड़ दोहड़ो ऐं राणा सर घरटियारी ऐं पोरण वाह ऐं ॿियूं नयूं वही आहियूं। मौसम ख़ुशगवार थी वई, जॾहिं त नंगर पार्कर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 2 ॾींहनि खां वक़फ़े वक़फ़े सां किथे हल्की त किथे तेज़ बरसाति जारी रही। ॿिए तरफ़ ॻोठ वाधड़ाई भरिस सां बरसाती नदी जे वहकिरे मां 45 वरनि जी लक्ष्मण कूलीअ जो लाश हथायो। वारसनि मूजिबि लक्ष्मण गुज़िरियल राति घरां बरसाती नदीअ जे वहकिरो ॾिसण जे लाइ निकितो हुयो। सुबुह जो संदसि लाश नदीअ मां मिलियो। बरसाति खां पोइ थर जे मारू माण्हुनि जूं रौनकूं मोटी आयूं ऐं फितरी मंज़र ॾिसण जे लाइ सियाह पहुची विया। जॾहिं त नगर पार्कर खां चोड़ियो रोड टुटण सबबि सियाह वॾे अंग में फाथल आहिनि। कुजरीअ भरिसां ॻोठ वली मोहम्मद आरे में बरसाति दौरान खिवण किरी पई। खिवण किरण सबबि घर जे अंगण में रांदि कंदड़ 4 सालनि जो ॿार विनोद पुटु चमन कूली फोती वियो। जॾहिं त वाक्य में 7 वरनि जो दिलीप पुटु चमन कूली ज़ख़्मी थी पियो। फोतीअ जो मड़ ऐं ज़ख़्मी खे तालके अस्पताल नियो वियो। डॉक्टरनि पारां हिकु ॿार जे फोत थियण जी तसदीक कई वई। वाक्य बाद फोती ॿार जे घर में घुराम अची वियो। ढोरो नारो ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में बरसाति जो पहिरियों विस्कारो शाम खां पोइ राति जे वक़्त ताईं जारी रहियो, जंहिं सबबि मौसम ज़बरदस्त थी वई। तालीम खाते पारां इंतिज़ामी सुधारनि जे लाइ क्लस्टर पॉलिसी ते अमल दरामद ऐं गैर ज़रूरी इंतिज़ामी उहिदा ख़तम करण जी मंज़ूरी। TEOs जूं 550 पोस्टूं पोल में मुंतकिल करण ऐं TEOs आफ़िस में मौजूदु 141,000 तदरीसी ऐं गैर तदरीसी अमले खे स्कूल क्लस्टर पॉलिसी तहत क्लस्टर हब स्कूलनि में मुंतकिल करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ज़िले ऐं डिवीज़नल सतह ते नए सिरे इंतिज़ामी जोड़ जक वारी तजवीज़ बि मंज़ूरु कई वई। काल्ह तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह जे सदारत हेठि थियल इजलास में माली साल 2025-2026 में सूबे जे 34,106 स्कूलनि जे लाइ जारी थियल स्कूल स्पेसिफिक बजट जे इस्तेमाल जो जाइज़ो वरितो वियो। इजलास खे ॿुधायो वियो त 18,60,00,00,000 रक़म मुख़्तस थी, जंहिं मां रुॻो 34% रक़म इस्तेमालु थी सघी। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त स्कूल एजुकेशन नाणे खाते ऐं ट्रेज़री विच में राब्ता वधाया वञनि, जीअं स्कूल स्पेसिफिक बजट जे इस्तेमाल में आसानियूं पैदा थी सघनि। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त ॼाणायल बजट जे इस्तेमाल जे सिलसिले में SOP सां बिल जमा कराइण लाइ हिकु चेक लिस्ट जारी कई वेंदी। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त नाणो खातो ऐं ट्रेज़री स्कूल स्पेसिफिक बजट तहत जमा थींदड़ बिल हिकु हफ़्ते अंदरि मंज़ूरु कंदा। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त स्कूल क्लस्टर पॉलिसी तहत TEO आफ़िसुनि में 141,000 खां वधीक तदरीसी ऐं गैर तदरीसी जायुनि खे बि मरहलेवार क्लस्टर हब स्कूलनि में मुंतकिल कयो वेंदो। जॾहिं त तालीमी एजुकेशन आफ़िसरनि जूं 550 जायूं बि पोल में मुंतकिल करण सां गॾु ज़िले ऐं डिवीज़नल सतह ते इंतिज़ामी ढांचे जे नए सिर जो झड़क वारी तजवीज़ खे बि मंज़ूरु कयो वियो। हाणे तालके में रुॻो हिकु TEO रहंदो, जंहिंखे पिणु स्कूल पोल मां पघार मिलंदी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध जे सदर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी चयो आहे त जेकॾहिं सिंध खे सिंधु दरिया मां आइनी ऐं कानूनी हिसे जो पाणी न ॾिनो वियो त सूबे जूं ज़रखेज़ ज़मीनूं बंजर बणिजी वेंदियूं, सिंध ॾुकार जो शिकार बणिजी वेंदी ऐं उन जा संगीन असर ईंदड़ नसुलनि खे भुगणा पवंदा। हुन चयो त वफ़ाक ऐं सिंध जा हुकमरान हिकु ई सिके जा बपासा आहिनि, पर अफ़सोस जी ॻाल्हि उहा आहे त सिंध हुकूमत सिंध जे मुफ़ादनि जे तहफ़ुज़ करण बदिरां उन्हनि खे नुक़सानु पहुचायो आहे। हुन सिंध जे हुकमराननि पारां राति जे ऊंदाही में बबरलो में प्रिया कुमारी समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां गुम थियल निंगरियुनि जी बाज़ियाबी जे लाइ क़ाइमु एहतजाजी कैंप ते पुलिस चढ़ाई। सख़्तु लठबाज़ी औरतुनि वकीलनि ऐं ॿियनि पुरमन एहतजाज कंदड़नि खे गेले गिरफ़्तार करण वारे अमल जी सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत कंदे चयो त अहिड़ो अमल जमहूरियत इंसानी हक़नि ऐं इज़हार जे आज़ादीअ ते हमिलो आहे। हुन मुतालबो कयो त गिरफ़्तार कयल समूरनि माण्हुनि खे फौरी तौरु आज़ादु कयो वञे, गुम थियल निंगरियुनि जी बाज़ियाबी खे यकीनी बणायो वञे ऐं ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कानून मूजिबि कार्रवाई कई वञे। हुन ख़्यालनि जो इज़हार हुन पंहिंजे रिहाइश गाह ते सिंध जे मशहूरु सियासी समाजी शख़्सियतुनि नामियारे कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड आफ़ताब गेरा, कामरान गेरा ऐं सैयद वली शाह सां मुलाक़ात दौरान कयो। हुन मौक़े ते मज़कूर शख़्सियतुनि पंहिंजे साथियुनि समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल में शमूलियत जो ऐलान कयो। सिंधु हुकूमत पारां 14 सरकारी तर्जुमाननि खे कानूनी हैसियत ॾियण जे लाइ कानून साज़ी करण जो फ़ैसिलो। तर्जुमाननि जी मुक़ररी अख़्तियारनि फ़र्ज़नि पघारुनि अलाउंस ऐं ॿियनि वरातुनि बाबति बिल आणण ते ग़ौर वीचार शुरू कयो वियो आहे। ज़रियनि मूजिबि तजवीज़ कयल नए कानून में सरकारी तर्जुमाननि जी मुक़ररी अख़्तियारनि ज़िमेवारियुनि ऐं वरातुनि बाबति कानूनी ढांचो मुतारिफ़ करायो वेंदो। ज़रियनि मूजिबि कानून जो मक़सदु तर्जुमाननि जे किरदार खे कानूनी हैसियत ॾियणो आहे। ज़रियनि मूजिबि त सरकारी तर्जुमाननि जी जी पघार अलाउंस ऐं मरातुनि खे वॾे वज़ीर जे ख़ासि मामलनि जे पघारुनि सां गॾाइण जी तजवीज़ ते गौर कयो पियो वञे। वाज़े रहे त सिंध हुकूमत जे रूल्स ऑफ बिज़नेस में सरकारी तर्जुमाननि लाइ का बि बाज़ाबता गुंजाइश मौजूदु न आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर पंहिंजा इंतज़ामी अख़्तियार इस्तेमालु कंदे सरकारी तर्जुमान मुक़ररु कया हुआ। उन 10वीं जुलाई 2024 में 6 ऐं जनवरी 2025 में वधीक 8 तर्जुमान मुक़ररु कया विया। उन्हनि तर्जुमाननि मां 4 सिंध असेंबलीअ जा मेंबर, 2 मेयर कराची सखर ऐं बाक़ी 8 अणचूंडियल आहिनि। ज़रे जो चवणु आहे त तजवीज़ कयल बिल गौर वीचार जे लाइ जल्द सिंध काबीना आॾो पेश करण जो इम्कान आहे। सिंध जे सरकारी कॉलेजनि में फर्स्ट ईयर में दाख़िलाउनि जो ऐलान कयो वियो आहे। उन हवाले सां कॉलेजिस खाते पारां सरकारी कॉलेजनि में शागिर्दनि जे दाख़िला जे लाइ लिस्ट जारी कई वई आहे। खाते जे डायरेक्टर जनरल चयो आहे त सिंध में दाख़िला जे लाइ 160,000 खां वधीक दरख़्वास्तूं मिलियूं। रुगो कराची में 98,646 दरख़्वास्तूं जमा करायूं वयूं। खाते मूजिबि शागिर्द 31 जुलाई ताईं पंहिंजी दाख़िला कन्फर्म कराइनि त जीअं दाख़िला जो मरहलो मुकमल थी सघे। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल सिंध काबीना जे इजलास में सूबे में कणिक जे ज़खीरनि, अटे जी क़ीमतुनि ऐं ख़ुराक खाते जे कारकरदगी जो जाइज़ो वरितो वियो। इजलास खे ॿुधायो वियो त सिंध में 2025-2026 दौरान 4.7 मिलियन टन कणिक पैदा थी, जॾहिं त सालियानी घुर्ज 6.53 मिलियन टन आहे, जंहिं सबबि ईंदड़ साल ताईं कणिक जी खोट जो ख़दशो ज़ाहिर कयो वियो। काबीना खे आगाह कयो वियो त ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई दौरान वॾे मक़दार में कणिक ज़ब्त कई वई आहे, जॾहिं त पास्को पिण पंहिंजे ज़खीरनि मां कणिक विकिरण जी आछ कई आहे। वॾे वज़ीर हिदायत कई त जेकॾहिं ज़रूरत पए त वफ़ा खां 5 लख टन कणिक ख़रीद कई वेंदी ऐं ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं वधीक तेज़ कयूं वेंदियूं। ॿिए तरफ़ सूबे में अटे जूं क़ीमतूं मुसलसल वधी रहियूं आहिनि, जिते 10 किलो अटे जे थेले जी क़ीमत 1600 रुपयनि खां बि मथे पहुची वई आहे। अवामी हल्कनि जो चवणु आहे त बुरान जो बुनियादी सबबु ख़ुराक खाते जी नाक़स मनसूबाबंदी, ख़रीदारीअ में नाअहली ऐं मुबैना करप्शन आहे, जंहिं सबबु आबादगारनि खे नुक़सान ऐं आम माण्हुनि खे महांगे अटे जी सूरत में तकलीफ़ खे मुंहुं ॾियणो पइजी रहियो आहे। अवाम मुतालबो कयो आहे त हुकूमत शफ़ाफ़ पॉलिसी अख़्तियार करे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ सख़्तु कार्रवाई करे ऐं अटे जी फराहमीअ खे यकीनी बणाए।

0: हिन वक्त जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण के दींदा इजाजत अलह निगहबान।
1: जो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: जी एफ एम 90.8।